What?

الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا.

يَعْلَمُونَهَا

0: और अगर तुम सफर पर हो और दस्तावेज लिखने वाला न मिल सके तो कोई चीज रहन बा कब्जा रखकर कर्ज ले लो, और अगर तुम में से कोई दूसरे को अमीन समझे यानी रहन के बगैर कर्ज दे दे तो अमानतदार को चाहिए कि साहिब अमानत की अमानत अदा कर दे, और अल्लाह से जो उसका परवरदिगार है डरे, और देखना शहादत को मत छुपाना, जो उसको छुपाएगा वो दिल का गुनाहगार होगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। तुम अपने दिलों की बात को जाहिर करोगे तो और छुपाओगे तो अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा, फिर वो जिसे चाहे मग़फ़िरत करे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई ईमान रखते ही, और मोमिन भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसके किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं, और कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों से किसी में कुछ फर्क नहीं करते, और वो अल्लाह से अर्ज करते हैं कि हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया, ऐ परवरदिगार हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है।
1: ला युकल्लिफुल्लाह

हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे क़ीमतुनि में हिकु भेरो ॿीहर इज़ाफ़ो करे छॾियो। पेट्रोल 13 रुपया 18 पैसा ऐं हाई स्पीड डीज़ल 13 रुपया 80 पैसा फी लीटर महांगो। पेट्रोल जी नई क़ीमत 310 रुपया 71 पैसा ऐं हाई स्पीड डीज़ल जी नई क़ीमत 323 रुपया 30 पैसा फी लीटर मुक़ररु। नोटिफिकेशन जारी।

कार्रवाई जो अख्तियार बुनियादी तौर ते सूबाई हुकूमत जो आहे। अदलिया जो नाहे अदालतूं गैर ज़रूरी मामलनि में मुदाख़लत न कनि। वफ़ाक़ी आईनी अदालत नसला टावर खे डराइण जो सबबु बणिजंदड़ सुप्रीम कोर्ट जा हुकुम वापसि वठी छॾिया। आईनी अदालत फैसले में चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट दायरे खां अॻिते वधी वॾा हुकुम जारी कया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीअ जी रिपोर्ट्स ते कानून घुर्जूं पूरियूं करणु बिना डराइण जा हुकुम नथा ॾेई सघजनि। हर केस में मुनसिफाणी कार्रवाई सभिनी जो हक़ आहे। वज़ीर आला हाउस में चौमासीअ जे वसकारनि ऐं बोर्ड बाबति इजलास। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ऐं NDMA चेयरमैन जी बि इजलास में शिरकत। सिंध ऐं वफ़ाक में चौमासीअ जे वसकारनि ऐं बोर्ड खे मोहन ॾियण बाबति सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। NDMA ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त 15 जुलाई खां 30 अगस्त ताईं मामूल खां वधीक गर्मी ऐं बरसातुनि जो इम्कान आहे। आबपाशी वारे वज़ीर जाम ख़ान छोरो चयो त सिंध हुकूमत चौमासीअ बाबति तयारियूं कयूं आहिनि।

0: जेको भी पाएशन कमेटी हुजे अदी हुजे केर भी फैसलो करे भली असां सलाह न पई वठनि असां हुननि जी बुक में तौर ते गैर मशरूत हिमायत कयूं था सलाह ते हज़ी लाइ कोशिश आहे हिननि ॿारनि खे बाज़ार करण लाइ असां केस कोई मां सेठ बशीर खान हुन सां मुक में तौर ते गैर मशरूत तौर ते गॾु हिमायत में गॾु
1: सिंध जे अंदरि दरिया कुमारी हुजे अली असगर मिंगरे हुजे फिज़ा ज़ैनब हुजे जेके बि मासूम नियाणियूं जेसन कौमी मार शहीद बशीर खान तरफ़ां पंहिंजे क़ौम जे माण्हुनि खे यकीन ॾियारायूं था त उन्हनि जी हर सूरत में बाज़ियाबीअ जे लाइ पंहिंजो भरपूर ऐं तारीख़ी किरदारु अदा कंदी।
2: हीउ मामिलो रुगो मूं हिकिड़े जे ॿार जो न आहे, प्रिया जी अमर जो न आहे, उजाला जी अमर जो न आहे, हीअ असांजे ईंदड़ वक़्त जो मामिलो आहे। सियासी शऊर आहे, समाजी शऊर आहे, नौजवान आहिनि या असांजा क़ौमी कारकुन आहिनि, उन्हनि जो हिकु थियणु, हुननि जी हिमायत करणु, हुन जो गॾु थियणु असांजे लाइ प्लस पॉइंट आहे।
3: हिते एपीसी घुरायो, हुन एपीसी में इहो फ़ैसिलो कयो त हिन रोड ते वेही रहो जेसी ताईं हिननि मासूमनि खे वापसि नथो कयो वञे।
4: प्रिया कुमारीअ समेत ॿियनि मुगवी ॿारनि जे बाज़ियाबी लाइ बबलो बाईपास वटि धरणो जारी। सिंध जे ॿियनि शहरनि में बि एहतजाजी मुज़ाहिरा। जिस्कम शहीद बशीर खान ग्रुप जो डॉक्टर नियाज़ कालाणी बि बबलो वटि कैंप ते पहुतो। घोटकीअ में जिस्कम तरफ़ां प्रेस क्लब अॻियां भुख हड़ताल कैंप क़ाइमु। सकरण में क़ौमी अवामी तहरीक पारां स्टेशन रोड खां सेनीमा चौक ताईं एहतजाजी रैली कढी वई। दादू में ॿारनि जे बाज़ियाबी लाइ प्यादल मार्च। समूरनि ॿारनि खे फौरी तौर ते बाज़ियाब कराइण जो मुतालबो। ठटे में ख़ासि कैली बिरादरीअ जे ॿिनि धुरनि में हिक ॿिए ख़िलाफ़ टिकटॉक ठाहिण वारे मामले तां जहिड़ो। फायरिंग में हिकु ॼणो क़तल, वारसनि जो लाश रखी धरणो। आमरी स्टाप ते जहिड़े दौरान गोलियूं लॻण सबबि फिदा हुसैन ख़ासि कैली मारिजी वियो। पुलिस मुख्य जवाबदार सदाम ख़ासि कैली समेत टिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। राणीपुर में जवाबदार पेकन वञण तां ज़ाल खे संदसि वालदेन साम्हूं गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। जवाबदार गिरफ़्तार। सोभो देरो राणीपुर लिंक रोड ते मोटरसाइकिल सवार जवाबदार खुदा बख़्शर वीहनि वरियनि जी रज़िया खे क़तल करे छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त रज़िया शर खे वालदेन वठणु आया त संदसि मुड़ुस घर में मौजूदु न हो। वालदेन पंहिंजे नियाणीअ खे वठी पिए विया त जवाबदार खुदा बख़्श रस्ते ते पहुची खेसि क़तल करे छॾियो। जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो आहे। वधीक जांच कई पई वञे।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
3: ये मासर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
3: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
3: ये मासर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
3: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
0: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पेट्रोल जी नई कीमत 310 रुपया 71 पैसा ऐं हाई स्पीड डीजल जी नई कीमत 323 रुपया 30 पैसा फी लीटर मुकरर नोटिफिकेशन जारी।

वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पिज़िकशान से फ़ोन ते राबतो। खिते में हाणोकी शिकत आणते गणती जो इज़हार। वज़ीर आज़म धुरन मथा जोर भरींदे चयो त अड़ो को भी कदम खण का पासो कयो वञे जैसा गुज़िरियल महीनन दौरान अमुन लाइ हासिल थींदड़ कामयाबियुनि खे नुक़सान पहुचे। इस्लामाबाद यादाश्त नामे खिते तोड़ी उन खां ॿाहिरि गॾियल एतराम ऐं गॾियल खुशहाली के हथी दियण लाइ हिक पाएदार बुनियाद फराहम करे थी। पाकिस्तान इलाकाई अमुन इस्तेहकाम जे बहाली ऐं बरकरार रखण में मुख़लिसाणो ऐं ईमानदारो किरदार अदा करण लाइ हर मुमकिन सहकार जारी रहंदो। ईरानी सदर मसूद पिज़िकशान शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई जे जनाज़े नमाज़ में पाकिस्तानी क़यादत जी शिरकत ते थोरायतो।

टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। मसइले जे सफ़ारत हल लाइ पुरअज़म आहियूं। अमरीकी अमलदारनि जी दावा, अमरीकी मीडिया मूजिबि तहरान ऐं वॉशिंगटन में टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी समेत सालिस मुल्कनि में शिकत आणे जे खात्मे लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं आहिनि। सालिस मुल्क एटमी प्रोग्राम ते ॻाल्हियुनि जे बहाली लाइ कोशिशूं करे रहिया आहिनि। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान सां मुकमल जंग जे हामी न आहे।

ये जो अख्तियार बुनियादी तौर ते सूबाई हुकूमत जो आए अदलिया जो ना है अदालतों गैर जरूरी मामलन में मुदाखलत न कन वफाकी आइनी अदालत नसला टावर के डराण जो सबब बनजदड़ सुप्रीम कोर्ट जा हुक्म वापस वठी छड़ा आइनी अदालत फैसले में चयो आए त सुप्रीम कोर्ट दायरे का अगते वधी वडा फैस हुक्म जारी कया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स से कानून घुर्जू पूरी कर बिना डराण जा हुक्म नथा दई सकजन हर केस में मुंसिफानी कार्रवाई सभी जो हक है वजीर आला हाउस में चौमासी के वस्कार बोर्ड बाबत इजलास वफाक वजीर मुसद्दिक मलिक एनडीए में चेयरमैन भी इजलास में शिरकत सिंध ए वफाक में चौमासी के वस्कार बोर्ड के मोहन डेण बाबत सहकार वधाण ते इतफाक एनडीए में ब्रीफिंग डींदे बुधायो त 15 जुलाई का

0: जेको बि पाइशन कमेटी हुजे अधी हुजे केर बि फैसलो करे भली असां सलाह न पई वठनि असां हुननि जी मुकमे तौर ते गैर मशरूत हिमायत कयूं था सलाह ते अजीदा कोशिश आहे हिननि ॿारनि खे बाज़ियाब करण लाइ असां कोई मां शेख बशीर खान हुन सां मुकमे तौर ते
1: आई हुजे अली असगर मिंगरियो हुजे फिज़ा ज़ैनब हुजे जेके बि मासूम नियाणियूं येसन क़ौमी मार शहीद बशीर ख़ान तरफ़ां पंहिंजे क़ौम जे माण्हुनि खे यकीन ॾियारायूं था त उन्हनि जी हर सूरत में बाज़ियाबी जे लाइ पंहिंजो भरपूर ऐं तारीख़ी किरदारु अदा कंदी।
2: ही मामिलो रुगो मूं हिकिड़े जे ॿार जो न आहे, प्रिया जी अमर जो न आहे, उजाला जी अमर जो न आहे, इहो असांजे ईंदड़ वक़्त जो मामिलो आहे। सियासी शऊर आहे, समाजी शऊर आहे, नौजवान आहिनि या असांजा क़ौमी कारकुन आहिनि, उन्हनि जो हिकु थिए, हुननि जी हिमायत करणु, हुनजो गॾु थियणु असांजे लाइ प्लस पॉइंट आहे।
3: हिते एपीसी घुरायो, हुन एपीसी में इहो फ़ैसिलो कयो त हिन रोड ते वेही रहूं जेसीं ताईं हिननि मासूमनि खे वापसि नथो कयो वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।

ਅਤੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਅਲੇ ਦਾ।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ढाडो सुठो
3: जीए FM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: ईरान मुखे कतल कयो या कतल करण जी साजिश कई ते 1000 मिसाइल ईरान ते फायर करण लाइ तयार आहियूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ज़रूरत पवण ते अमेरिकी फ़ौज खे ईरान खे मुकमिल तौर तबाह करण जूं हिदायतूं बि ॾिनियूं वयूं आहिनि। ईरान खे साज़िश रोकणी पवंदी।
1: ईरान ॻाल्हियुनि जी दरख़्वास्त बाबति अमरीकी सदर जी दावा रद्द करे छॾी। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राखची चयो आहे त ईरान मफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल कयो आहे। अमरीकी नाणे वारी वज़ारत शिक नंबर 9 जी भञकड़ी कई आहे। अमरीका सां मुआहिदो गॾियल बुनियादनि ते ई थी सघे थो।
0: महीननि खां तकरारी बणियल कराची बार एसोसिएशन जूं चूंडूं जारी। सदारती उमेदवार लाइ आमिर नवाज वड़ाइच जी एम कोराई ऐं असदुल्ला शाह साम्हूं आमो साम्हूं नायब सदर जे उहिदे ते आमिर शहज़ाद ऐवान इरफान अली कीरियो मोहम्मद हारून खोसो मोहम्मद इरफान ऐं नज़ीर हुसैन शर में मुक़ाबिलो पहिरियों भेरो वोटिंग बायोमेट्रिक ज़रिए थी रही आहे। सिटी कोर्ट में 2 डिजिटल पोलिंग स्टेशन ऐं 90 डिजिटल बूथ क़ाइमु कया विया। 90,000 खां वधीक रजिस्टर्ड वोटर्स बायोमेट्रिक में घटिजी 5,500 थी विया आहिनि।
1: टंडो गुलाम हैदर में फुलेली कैनाल मां निकिरंदड़ शाहवाह में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो। हैदराबाद बदीन रोड ते धरणे सबबि गाॾियुनि जूं डिघियूं कतारूं लॻी वियूं। आबादगारनि जो चवणु आहे त पाणी न हुअण सबबि पोखियल बेजारो सड़ी वियो आहे। पूछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश। फकीरी एनर्जेसिक क्रीम
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
4: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
4: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।

परमेश्वर जे राज में कॾहिं वॾेरी हुआसीं।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: डॉक्टर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: चाक डूंगर डोरियो नदी।

من میں چارین اللہ تے من پشائین تہیہ قربانی چیر پیو

قلب میں تعین

ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਸਾਂ ਜੇਰੋ न पुछन बियो भेरो ये कुर्बानी केरु थियो ओ पागल कजी तो दिया ओ हियो सारु हथन मनी खा विलायत में अग्यो अजीब ओ तेरी मां न चवल कहिया कुर्बानी केरु थियो

ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਜਨ ਖੂਸ ਬਦਾਲ ਦੂਨੀਆ।

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: बलोचिस्तान में फोर्सिस जो ऑपरेशन शहबान जारी वधिक नव खारजी दहशतगर्द मारजी वया ऑपरेशन दौरान मारजी वयल खारजी दहशतगर्दन जो अंग वधी 52 थी वयो सेक्रेटरी जरीन मूजिब पाक फौज एफसी ए पुलिस जो खारजिन खिलाफ ऑपरेशन जारी है ताजन कार्रवाई में वधिक नव खारजिन के जहनम भेड़ो कयो वयो खारजिन खिलाफ जमीनी ए फिजाई कार्रवाइयों भी कई पी वन 5 जुलाई का जारी ऑपरेशन शहबान ए बेन ऑपरेशंस में 88 दहशतगर्दन के मारो वो है घर वजीर मोहसन नकवी पारा कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सेस के भेटा पेश मोहसन नकवी चयो तो मुल्क में लिकल समूरन दहशतगर्दन के खत्म कयो वेंदो
5: चिकतान में वाद बाद अमेरिका जहाज बरदार बेड़ा ईरान वेझो मुकरर करे छड़ा यूएसएस इब्राहिम यूएसएस चार डब्ल्यूएच बुश के ईरान वेझो मुकरर कयो वयो सेनेट काम मूजिब अमेरिका जा वीह खां वधीक जंगी बेड़ा विच ओभर जे समुंड में गश्त करे रहा आहिनि ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरानी फ़ौज जे दुश्मन जी चुरपुर ते नज़र आहे फ़ौज मुल्की सलामती ऐं अवाम जे तहफ़ उसके यकीनी बनाए रही है ईरानी कौम के पंहिंजे फौज ते फख्र आहे
4: ईरान ए अमरीका विच में गालन जो ईंदड़ दौर स्विट्जरलैंड में थियण जो इम्कान अमरीकी मीडिया मूजिब पाकिस्तान सऊदी अरब कतर ए मिस्री अख्तियार अमरीकी ए ईरानी अख्तियार से राबता कर छिकताण खत्म करण ते गाल बोल कई है जै बाद बिन्हीं मुल्क एक बे ते हमला भी बंद कया
5: मूंखे कतल कयो वञे त ईरान खे धरतीअ तां विसारे छॾिजो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो फ़ौज खे हुकुम न्यूयॉर्क टाइम्स खे ॾिनल इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सालनि खां मूंखे निशानो बणाइण जी कोशिश करे रहियो आहे ईरान जेकॾहिं मूंखे क़तल कयो या साज़िश कई त फ़ौज खे सख़्तु जवाब ॾियण जो हुकुम ॾेई चुको आहियां अमेरिकी फ़ौज ईरान ते 1000 मिज़ाइल फायर करण लाइ तयारु आहे तहरान खे साज़िश तां पोइ ते हटणो पवंदो
4: काब जंग ईरान जी हथियार फिटा करण सां ख़त्म न थींदी पोइ ते न हटंदासीं अमरीका मुआदो टोड़ियो त ज़िमेवार पाण हूंदो ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ़ चयो आहे त जंग लाइ हर वक़्तु तयारु रहंदड़ मुल्क ई अमरीका सां मुयसर ॻाल्हियूं करे सघे थो परॾेही वज़ीर अब्बास राक्ची जो चवणु हो त अमरीका खे ॻाल्हियूं जारी रखण जी दरख़्वास्त नाहे कई ईरान मफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल कयो आहे अमरीका सां मुआदो गॾियल बुनियादनि ते ई थी सघे थो
5: सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां राबतो बिन तरफ़न लागापन समेत खिते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं ॿिन्ही अॻवाणनि अमेरिका ऐं ईरान विच में हलंदड़ ॻाल्हियुनि जो बि जाइज़ो वरितो ॿिन्ही अॻवाणनि बहिरी रस्तनि जी हिफ़ाज़त ऐं आज़ाद चुरपुर ऐं खिते जी सिक्योरिटीअ खे हथी ॾियण वारनि कोशिशनि ते ज़ोर भरियो
4: पिरियालो वेझो कलोड़ा बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में झेड़ो हिकु ॼणो क़तल हिकु ज़ख़्मी ॻोठु गहणो कलोड़ो में ज़मीनी तकरार तां धुरनि में झेड़ो थी पियो गोलियूं लॻण जे नतीजे में रहीम बख़्श कलोड़ो क़तल थी वियो हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो हिकु ॼणे जी क़तल बाद धुरनि में तकरार तेज़ थी वियो इलाइक़े में ॾकाओ
5: छह महीननि खां तकरारी बणियल कराची बार एसोसिएशन जूं चूंडू जारी सदारती उमेदवार आमिर नवाज़ वड़ाइच जी एम कोराई ऐं असदुल्ला शाह आमो साम्हूं नायब सदर जे उहिदे ते आमिर शहज़ाद ऐवाण इरफान अली कीरियो मोहम्मद हारून खोसो मोहम्मद इरफान ऐं नज़ीर हुसैन शर में मुक़ाबिलो पहिरियों भेरो वोटिंग बायोमेट्रिक ज़रिए थी रही आहे
4: टंडो गुलाम हैदर में फुलेली कैनाल मां निकरंदड़ शाहवाह में पाणी कोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो आबादगारनि हैदराबाद बदीन रोड ते धरणो हुयो आबादगारनि जो चवणु हो त पाणी न हुअण सबबि पोखियल बेजारो सड़ी वियो आहे ज़मीनूं बि सुकी ठोट थी वियूं आहिनि पूछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे
5: بٹیاری جے علاقے سے کھاٹ بھرسا گوٹ دین محمد جت میں گٹی جے معاملے تا بن جڑ دورن میں جڑو لٹھیوں ہے کواڑیوں لگن سبب نیگر سمیت بجنا رتو رت زخمین میں فرمان جت انتظار جت شامل زخمین جو چوڑا ہے تے گٹی جے معاملے تا کھین حملو کرے زخمی کیو ہوا ہے

पाक खाक दे वेस दिल का सुना यार सरो पानूर मिया उई वेस चंगे।

हे हुसन दा मल सब कोई जाने हुसन खास जहूर जात दा है अहमद नाम सदा वे विच अरब सुना जावे जात सिफात दा है कुर्सी अर्श ते हूर मलक अकसुई आली दर जात दा है शमा हुसन दा।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ढाडो सुठो
3: जीए FM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
1: असदुल्ला शाह आमू सामू नायब सदर के अहदे ते आमिर शहजाद अवान इरफान कीरियो मोहम्मद हारून खोसो मोहम्मद इरफान ए नजीर शर में चोटी जो मुकाबलो पेरों भेरों वोटिंग बायोमेट्रिक जरिए थी रही है।
2: टंडो गुलाम हैदर में फुलेली के नाल मां निकरंदड़ शाहबा में पानी खोट खिलाफ आबादगारन जो धरणो आबादगारन हैदराबाद बदीन रोड ते धरणो आयो आबादगारन चयो त पानी न होण सबब पोखेल वेजारो सड़ी वयो आहे जमीनू भी सुकी ठोट थी वयूं आहिनि पोछड़े ताईं पाणी पहुचायो वञे।
1: मीरपुर माथेले में हारन हणण ए गाड़ी के क्रॉस करण ता पोरे तक तशद्दुद जो निशानो बणाईंदड़ वडेरे खिलाफ केस दाखिल वडेरे हाजी खान मर मथा सरकारी फिरियाद ते केस दाखिल कयो वियो पुलिस वडेरे के गिरफ्तार करण में मुकम्मल तौर ते नाकाम बणियल गाड़ी के हारन ॾियण ऐं क्रॉस करण ते वॾेरे हाजी खान महर फहद लगारी खे तशद्दुद करे गाॾीअ सां गेलियो हो वॾेरे हाजी खान महर जी मेड़ वठी अचण ते पोरत खेसि माफ़ बि कयो हो। मीरपुर माथेलो जी अदालत पारां नोटिस वठण बाद दाद लगारी थाणे ते वॾेरे मथां केस दाख़िल कयो वियो।
2: जखमाबाद भरसा शिकारपुर रोड ते कहर बिरादरी जो धरणो गोट ते चढ़ाई करे जखराणी धुर ते 40 मेहू काहे वञण जो इल्ज़ाम मुजाहिरन मूजिब जखराणी बिरादरी जा हथियार बंद मामूली ॻाल्हि तां गोट ते हमिलो करे 40 मेहू काहे विया आहिनि पुलिस हथियार बंदनि सां बिट बणियल आहे मेहू वापसि करायूं वञनि।
1: घोटकी में नौजवान ज़ाल समेत मुबैना तौर अगवा वालदेन जो एहतजाज बाज़ियाबी जो मुतालबो ॻोठाणे ग़ुलाम रसूल शेख जो ज़ाल सां गॾु पुट ऐं नुंहं जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज वालदीन मूजिबि पुट अली हसन सईदा सां पसंद जी शादी कई हुई नारीअ जा वारिस नाराज़ हुआ पुट घरवारीअ खे डॉक्टर ॾांहुं वठी वियो हो ॿिन्हीअ खे बाज़ियाब करायो वञे।
2: डिप्लो में बकरियूं चोरी करे फरार थींदड़ मुबैना चोर गाॾीअ तां किरी फोत गाॾीअ जो ड्राइवर गिरफ़्तार ॻोठ वेहड़े चप मां बकरियूं चोरी कंदड़ चोरनि जी गाॾीअ खे स्टाफ वटि पुलिस रोकियो चोर पुलिस खां फरार थियण जी कोशिश कंदे मुबैना तौर गाॾी मां किरी फोत थियो ड्राइवर गिरफ़्तार पुलिस मूजिबि गाॾीअ तां किरी फोत थियल चोर जी सुञाणप ॻोठ पतड़ियार वासी रसूल बख़्श दल तौर थी आहे चौपाए माल जी चोरीअ में इस्तेमालु थियल गाॾी जो गिरफ़्तार ड्राइवर टंडो बाघो जो रहवासी आहे।
1: ऐं टंडो गुलाम अली वेझो जीअ झोरींदड़ रोड हादसो टायरा टुटण सबबि सुज़ूकी कल्टी ॿ औरतूं फौत 8 ॼणा ज़ख़्मी ज़रदारी रोड ते हादसे में ॻोठ मुराद अली शाह वासण सुल्ताना लाशारी ऐं बशीरा थॾे ते फौत थी वियूं हादसे में अरब लाशारी रज़िया लैला ऐं ॿिया ज़ख़्मी थी पिया औरतुनि जा मड़ ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी
0: TN न्यूज
4: सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: सिंध के माथे का झूमर
3: GFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आरजे एनयू डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब, और यहाँ पर जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ जरा आप अपनी हालचाल बताते जाइए सो डियर लिसनर्स। अंतिक हालत उन कैसे है आपकी हालत उन उम्मीदन शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे, तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मार तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि हमारे पास पूरे 2 घंटे हैं। तो बिल्कुल इन 2 घंटों में आप लोगों के साथ इतनी शाली बातें करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान। सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्रा अली बोस आपके होंठों पर 440 सौ की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 सौ की स्माइल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं आगर से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगर से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी नात के साथ, तो बहुत प्यारी सी नात और कलाम सुन लेते हैं। उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं वाइजेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइजेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपका हमारा साथ पूरे 3 बजे तक का।

0: बाद है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा कलाम यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे थे और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दामन से। तो आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कितनी सारी प्यारी प्यारी समाते हैं वो तो मुझे आप बताने वाले, और इसी के साथ साथ अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनना चाहते हैं और शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो बहुत से तवाली बातें हैं जो कि आप लोगों को हम बताएंगे। और उससे पहले जो है ना, सबसे पहली बताने वाली बात जो है वो ये है कि भाई आज के प्रोग्राम में आप लोगों से टॉपिक यानी कि जो सवाल पूछेंगे हम, तो वो क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम के सवाल की बात करें तो आज मेरे पास जो आप लोगों से पूछने के लिए सवाल है तो वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि गर्मियों के हिसाब से अगर बात की जाए या गर्मियों से देखा जाए तो काफी ज्यादा गर्मियां जो ना वो ऐसा नहीं है कि भाई या तो एकदम से गर्मियां आ चुकी हैं या तो ऐसा है कि एकदम से बस थोड़ी ज्यादा हो रही है फिर कम हो रही है, थोड़ी ज्यादा हो रही है फिर कम हो रही है। एकदम से जो गर्मियां ना वो फ्लेट में चल रही है, यानी कि मुसलसल गर्मियां ही गर्मियां है और वो भी बहुत शदीद वाली गर्मी है, खास करके लाड़काना में। तो बाकी एरियाज में कितनी सारी गर्मी है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ साथ मैंने ये सोचा कि आज आप लोगों से जरा जो है कुछ ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो कि आप लोगों को थोड़ा सा जो ना वो सोचने पर मजबूर कर देगी, आखिर इस सवाल का जवाब हम क्या देंगे। तो अगर आप लोगों के पास जो है ना दो ऑप्शन हो, ठीक है, यानी कि दो ऑप्शन हो लेकिन आपने सिर्फ एक चीज को चूज करना है, हिकड़ी शइ जेका न तव्हांखे सिर्फ पिक करणी आहे, ऐं तव्हां उहो ॿुधाईंदा त तव्हांजी नज़र में कहिड़ी शइ जेका गर्मियुनि में ज्यादा इम्पोर्टेंट आहे, ऐं तव्हां मूंखे ॿुधायो गर्मी में तव्हां वटि ॿ ऑप्शन आहिनि। तव्हांखे हिकिड़ो माण्हू चए थो त बाबा तव्हांखे ॿ चीज़ूं असां ॾींदासीं, या तव्हां पंहिंजे दोस्त खे सिलेक्ट कयो या तव्हां आइसक्रीम खे सिलेक्ट कयो। ऐं अगरि तव्हांखे ॿई न सिर्फ हिकिड़ी चीज सिलेक्ट करणी आहे त तव्हां दोस्त खे सिलेक्ट कंदा या फिर तव्हां आइसक्रीम खे सिलेक्ट कंदा। छो त ॾिठो वञे त गर्मी जे मौसम में ज्यादातर अगरि असांखे कोई थधी शइ ऑफर कंदो आहे न, असां चवंदा आहियूं बाबा हर शइ खे जेको आहे न साइड ते करे असांखे थधो आहे। उहो आइसक्रीम बि थी सघे थी, कोल्ड ड्रिंक बि थी सघे थी, कुझु बि थी सघे थो, पर उहो थधो हुजे, ठीकु आहे। सो तव्हां मूंखे अॼु ॿुधाईंदा त गर्मी में अगरि को माण्हू तव्हां खां जेको आहे न तव्हांखे हिकिड़ी चीज ॾे ऐं तव्हांखे ऑप्शन हुजे त तव्हां दोस्त सिलेक्ट कंदा या तव्हां आइसक्रीम सिलेक्ट कंदा। ओके ॾिसो असांजे प्रोग्राम जो अॼु इहो सवाल आहे। हुन खां अलावा अगरि तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे प्रोग्राम ॿुधो पिया, हां जी बिल्कुल, पहिरीं मरतबा रोज़ाना या फिर आप घुने वाले लिसनर्स है तो आप क्या करने वाली हैं, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। और अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा फेसबुक पेज है, आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। पेज पर आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो तीनों काम कीजिए, पोस्ट को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी करते जाइए, क्योंकि आप जानते हैं शेयरिंग इज कैरिंग होती है। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बताइए आप मुझे कहां से सुन रहे हैं। और ये भी बताइए साथ में कि क्या आपके एरिया में व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं या फिर अभी तक रहते हैं। अगर अवेलेबल हो चुके हैं तो बहुत बढ़िया, बताइए कौन कौन लिसनर हमारे ऐसे हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और बहुत से ऐसे लिसनर हमारे साथ होंगे जिनको नहीं होगा पता कि भाई हमारे एरिया में मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो उसके लिए आप ऐसा किया करें कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाया करें और वहां से मालूम लिया करें। अगर आपको वहां से ये पता चलता है कि भाई हमारे एरिया में तो नहीं अवेलेबल, तो उसके लिए आपने डायल करना होगा 03-15-799-0595-1570-9595 ही नंबर तव्हांखे डायल करणो आहे। नंबर डायल करण खां फौरन बाद तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर्स ते व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि उहे अवेलेबल थी वेंदा। अवेलेबल थींदा त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे तव्हांजे लाइ आसानी थी वेंदी ऐं तव्हांखे वठण में ऐं तव्हांखे परचेज़ करण में जेको आहे आसानी हूंदी। सो चवंदा आहिनि वैसे बि आसानियूं पैदा करणु घुरिजनि, समुझो था। सो तव्हां बि आसानियूं पैदा कयो ऐं हुन खां अलावा व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स खे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर्स में अवेलेबल करायो। ओके हो गया जी, डन हो गया। इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से पूछ लिया है अगर आप लोगों को कोई ऑप्शन एक आपने चीज को पिक करना है, एक चीज को आपने चूज करना है, तो आप दोस्त को चूज करेंगे इन गर्मियों में या फिर आइसक्रीम। ओके जी, जल्दी से मुझे बताइए। और इसी के साथ साथ मोहम्मद जमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम टू द शो स्वीट बुआ जी, वेलकम टू यू मोहम्मद जमान। और फहीम शेख हमारे साथ आ चुके हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, सलामत खुश आमदीद कहते हैं। हजार खंड जतोई भाई, वालेकुम अस्सलाम। और फहीम कहते हैं चाहल अहवाल आए, खुश आयो सफर, चाह को जी चाह को कलम स्लेट सब लगा पाया, तां बुधाया कि आयो और हमारे साथ हैं जी अदील खान, कहते हैं बेहना तवा के मंजन जो सलाम कबूल हो जाए, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन सुमामीन, थैंक यू। और मोहम्मद समान कहते हैं कुछ बातें छोड़ देना ही बेहतर होता है, हर बात दिल पर लेना जरूरी नहीं, जो नसीब में हो वो मिल ही जाता है, और जो दिल को बेचैन करे उसे दिल से निकाल देना ही सुकून है, तुम तवक्कात सादा जिंदगी और मजबूत यकीन ही जहनी सुकून का रास्ता बनेगा। ओके जी, हाय क्या बात है, यानी कि ऐसी आज थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें मेरे साथ शेयर की थी, ये पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा मेरे दिल के ऊपर बोझ बन गया यार। मैं उदास हूँ और उदास भी ऐसी नहीं शदीद वाली, तो बस थोड़ा सा आप आज मुझे मोटिवेट कीजिएगा। और उसके अलावा अदील कहते हैं बिना शायरी आए हमने चर्चे बहुत सुने थे तेरे सखावत के, क्या मालूम था कि तुम दर्द भी दिल खोल कर देते हो, क्या बात है जी क्या बात है। और उनखा अलावा गाने जी तमाम फरमाइश की या कोशिश करना जी सबनी चा गाना हलाइंदा सी। और हैदर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं भाई आपको, चाचा खाले जुड़ी जो आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं मिस यू ऑन फ्राइडे, अच्छा एक दिन नहीं आई तो आपने मिस करना शुरू कर दिया, क्या बात है जी बहुत शुक्रिया। और मलिक जफर हमारे साथ कहते हैं मोहम्मद बख्श पाकिस्तान रेलवे गेट मीन, चलिए बहुत ही एक अजीबो गरीब सा आपने मैसेज भेज दिया, लेकिन लास्ट में आपने लिखा है कमाल शो आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। काम की बातें समझ आती है मुझे। और निदरी कहती है सलाम अलैकुम प्यारी आज वेलकम टू शो, मैं भी साथ साथ हूँ, थैंक यू सो मच मेरी जाना। और ए एम अंसारी कहते हैं हाउ आर यू, सलाम टू ऑल, गुड आफ्टरनून, हेलो ए एम अंसारी। और वफा शहजादो मक्सी हमारे साथ हैं, लाड़काना से आप हमारा शो सुन रहे हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्यारे भाईजान, पोस्ट को लगे हाथ आप शेयर और लाइक कर दिया करें। और किशोर भाई कहते हैं सलाम अद्दा, अज टॉपिक एतरो थदो छो आछो तजमा पान थदी लगी पई आना समझो था। और जी हमारे साथ अदील कहते हैं टॉपिक थदी बोतल एंड मिठाई, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। ए मंसारी कहते हैं टॉपिक पे दोस्त खे छो जो दोस्त ही था आइसक्रीम खा रहा है दो, अगर दोस्त न खा रहे तो पोछा गंदा। अजकल दोस्तन ते एतरो ट्रस्ट न करना कयो बाबा। और चाचा खालिद कहते हैं गर्मी में तो गर्मी में भी दोस्त के सिलेक्ट कंदा सी, पर दोस्ती बेवफा आहे, खास करे लाड़कानी जा मानू, यो टॉपिक आंसर से डूबे जा, लाड़कानी जा मानू बेवफा आइन, लगे तो तमा वफादार मानन सा टकरिया को ना हो। उनखा अलावा शबीर मलिक हमारे साथ हैं जी, खुशामदीद करते हैं आपको। और मोहम्मद जमान कहते हैं स्वीट बुआ जी आई सिलेक्टेड आइसक्रीम चैलेंज चैलेंज आइसक्रीम। ए मंसारी कहते प्लीज प्लीज सॉन्ग तेरे बिन में यूं कैसे जिया, लगाते हैं जी सबके गाने और हुक्म करें। किशोर भाई कहते हैं अब आपका सवाल यूं है कि अगर हम किसी से पूछें जमी ऊपर है या आसमान, हर मानू चवंदो आसमान। सुठी गाला ना, हर कहें हर चीज जी खबर हो जन जरूरी है। निदरी कहते हैं टॉपिक दोस्त को, क्योंकि गर्मी हो या सर्दी दोस्त हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, क्या बात है भाई। और दर्दे दिल आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम चंदा जानी, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएंगे आप कैसी हैं स्वीटी। और हजार भाई कहते हैं दोस्ती यो टॉपिक आंसर, क्या बात है भाई क्या बात है यार, लगता है दोस्ती को ज्यादा वोट मिलने वाले हैं। ओके जी लाली लिसनर हमारे साथ मौजूद, लाली लिसनर आपको भी खुश आमदीद। और उनखा अलावा तमाम असन जी प्रोग्राम जी पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो, आई टॉपिक के फॉलो कयो, आई मुखे बुधायो तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट सुजन या डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट सुजन किथे पोता है तमाम जे एरिया में, मिलन था कौन मिलन था, लगायो पिया कौन लगायो पिया, ये उहे गालियो आइन जेके तमाम शेयर करना कयो त अल्लाह डाडा भलायो तब। सो शेयर कयो ऐ जल्दी जल्दी डायल कयो 03-15-799-5-1-15-79-5-95-5-0-5-9-5-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0-5-9-5-0- remote hi thoda tamaka dinaman jo ite bithao jo ma oh hi motan thi so stay tuned stay connected and keep listening whitish and day skin beauty show is sponsored by whitish beauty products and day skin beauty products lagati rahiye aur khoobsurtiyan hasil karti rahiye
1: FM 88 Network سندھ کی آواز کیا آپ تہذیب و ثقافت
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद।
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ज्यादा अच्छी होगी। और इसके साथ साथ जो है ना व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम है, और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले, तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहिए। उसके अलावा बाकी जो लोग हैं वो थोड़ा सा इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने साबुन लगाना है या फिर हमने फेस वॉश लगाना है, तो इस चीज को अगर आप थोड़ा दूर करना चाहते कंफ्यूजन को, तो आपको मैं बताती चलूं कि अगर आप व्हाइटिश का साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका साबुन जो है वो आप लोगों को बिल्कुल जी ऐसा है कि अगर आप कोई भी साबुन लगाना चाहते जो कि आप लोगों की स्किन को प्रोटेक्ट करे, आप लोगों की स्किन को ग्लोइंग बनाए, तो आप व्हाइट एज का ब्यूटी सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आप फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एज का जो फेस वॉश है वो वाइटामिन सी से तैयार किया गया, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है, और इसके अंदर वाइटामिन ई भी मौजूद है, वाइटामिन सी भी है और ई भी है, समझ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये इतना जबरदस्त है क्योंकि ये क्रीमी फेस वॉश है, तो आप अगर फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एज का जो है ना विटामिन सी का फेस वॉश आप जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा। इसी के साथ साथ ये तमाम व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएंगे और आप लोगों को बहुत से भी बहुत ज्यादा वाला खूबसूरत बना देंगे, तो आप इस्तेमाल करते रहिए और अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहिए। और साथ साथ डायल करते रहिए 03-15-799-0595 बोड़ी 3159-5595 ही नंबर आहे, इन के तमाम लाजमी डायल करो जी, तमाम जी गरीबी जनरल स्टोर से व्हाइट एज जा तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वञनि।

ही प्यारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रोग्राम सुन रही है जिसका नाम है व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। और यहाँ पर फहीम शेख कहते हैं कि टॉपिक दोस्त के सिलेक्ट करना सी छो जो दोस्त दिल जाए भी ॾींदो आहे पखो भी हणंदो आहे कचहरी भी कंदो आहे अकेलो इंसान आइसक्रीम त खाईंदो पर अकेलो बोर भी थींदो। सही आहे भाई। अच्छा किशोर भाई कहते मूंखे खबर हुई तव्हांखे ई त खबर हूंदी आहे सभु। अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद है। ओके जी सकरन से आप हमारा शो सुन रहे हैं वेलकम करते हैं आपको। और शबीर मलिक हमारे साथ हैं। शबीर भाई आपको खुशामदीद करते हैं। निदिरी कहती है चाहते है की चंदा दोस्त मुझे दोस्त चाहिए अली। और चाचा खाले तव्हांखे जेको नंबर प्रोग्राम में ॿुधायो वञे थो हिन नंबर ते तव्हां राबितो करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते या वरी तव्हां उन्हनि खे ऑर्डर कराए सघो था। ठीकु आहे सो अगरि मचकिरिया का त पोइ रहने दे बाक़ी अगरि तव्हां सीरियसली घुराइण चाहियो था त पोइ तव्हां हिन नंबर ते राबितो करे घुराए सघो था। और निदड़ी कहती है अच्छा जी तुम ठंडी हो मेरे साथ बैठ जाओ क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। ओके ए मंसारी कहते छो जो आइसक्रीम वारो ई दोस्त आहे खाराईंदो आहे ऑलवेज वाह वाह यानी कि दोस्त बि कयो था त आइसक्रीम वारो। हाँ भाई तरक्की आ तरक्की बो ओके जी। शजर अब्बास हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम एंड बोला इस्लाम मदद कहते हैं क्या सिद्रा जी आप कैसी हैं शो इज सुपर हिट। मुसव्विर अब्बास लाशारी फ्रॉम राजी देरो मेरा दोस्त है बासित अली खान लाशारी। ओके जी आप भाइयों को वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया राजी देरो से आप हमें सुन रहे हैं। उनका अलावा प्रेमचंद भाई है वालेकुम अस्सलाम भाई मैं ठीक हूँ आप बताए आप कैसे हैं। अच्छा अच्छा था चो किशोर भाई जी दोस्त खां धोखो खाधो आहे समझ हुन खे माण्हू जी समझ कोन आहे। बिल्कुल इहा ई ॻाल्हि आहे माण्हू जी समझ हुजां त अॻिते न हुजो आ। और कहते हैं कि तुम मेरे हो ऐसी जिद हम कभी नहीं करेंगे हम तुम्हारे हैं ये हम पूरे हक से कहेंगे। वाह वाह ओके जी पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए। हजार भाई कहते हैं कि हम आपके साथ साथ हैं शो में गुड शो लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन माशाल्लाह थैंक यू सो मच हजार भाई। और जी दर्द दिल कहती हैं कि छोड़ो सब वादों को कस्मों को इरादों को तुम आईना देखो और बताओ मेरी पसंद कैसी है सुनो जाना एहसास की दुनिया में तुम मेरी सबसे खूबसूरत मिल्कियत हो। क्या बात है जी क्या बात है बहुत बेहतरीन

जी क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना आप सुन रहे हैं यहाँ पर साथ की आवाज में, एक बहुत ही प्यारा गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज हम साथ का गाना भी सुन लेते हैं और साथ साथ अरे कोशिश तो कीजिए आज थोड़े सैड गाने फरमाइश मत कीजिएगा।

अच्छा हजार भाई कहते हैं दोस्ती पर शायरी है, जरूर रीड कीजिएगा। दोस्ती वो अनमोल रिश्ता है जो हर मुश्किल में साथ निभाता है, बिन कहे जो दिल की बात समझ ले वही तो सच्चा दोस्त कहलाता है। वाह वाह वाह वाह। और मोहम्मद जमान कहते हैं बुआ जी प्लीज मास्टर मंजूर। जी जी मास्टर मंजूर का गाना आज लाजमी चलेगा, आप बस अपनी सीट पर बैठी रहिए। और आपने कहा आई डेडिकेट माई बेस्ट फ्रेंड, ओके जी शौकत अली खोड़ो के नाम क्या बात है, बायोलेब स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ओके जी वेरी नाइस, जबरदस्त सुनकर अच्छा लगा।

हाँ भाई फहीम, आप टेंशन ना करें, लारकाना वालों के ऊपर कुछ ज्यादा ही इल्जाम लग रहे हैं, तो बस आप थोड़ा इग्नोर कर दें। अच्छा, दर्दी दिल की दोस्त भी हमारा शो सुन रही है, बहुत शुक्रिया। दोस्त को जरा मशवरा देंगे वो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, और वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो खूबसूरती है वो हमेशा के लिए लॉक हो जाए। खूबसूरत आप सारे लोग होते हैं, बस ऐसा सीन बन जाता है कि आपकी खूबसूरती को जरा जरूरत होती है थोड़ी टचअप की। अगर आप अपनी खूबसूरती को निखारते नहीं है, खूबसूरती का ख्याल नहीं रखते, तो आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा मसले आ जाते हैं। तो उन मसलों को हल करने के लिए, आपकी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए, आप लोगों की स्किन को हमेशा तरोताजा शादाब

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना हमने सुना. और साज जो है ना, वो यानी कि बचपन से लेकर ये मेरे फेवरेट है. मैं बिल्कुल छोटी सी थी तब से मैं साज के गाने इतने ही पसंद करती हूँ जितने मैं आज करती हूँ. ऐसा है कि मेरी जो पसंद है ना वो हमेशा सेम ही रहती है. जैसे लोगों की पसंद तब्दील होती रहती है ना, चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ, ऐसा मेरे साथ नहीं होता. अच्छा नदीड़ी, कहती है ये सॉन्ग मैंने अपनी कजन की शादी में प्ले किया था, किसी को समझ नहीं आ रहा था बट मैंने फुल एंजॉय किया था. ओके, और ये इसके बारे में क्या ख्याल है?

अब ये गाना सुनकर मुझे थोड़ा थोड़ा उस मूवी की वाइब दिला रहा है जिस मूवी में, यानी कि जिस मूवी का नाम ऑब्सेशन है, वो भी ऐसे विश मांगता है तो थोड़ा काम इधर उधर हो जाता है. तो ऐसा है कि मैजिक की बात आजकल जो है ना वो मर्द समाज में पूरा

मुझे यासीन खान हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, खुश आमदीद कहते हैं, दर्द दिल कहते हैं। अलीजा सो रही थी तो मैंने उसको उठाया और कहा सिद्रा आ गई है, शो सुनो, अच्छा किया ना। अरे भाई हाँ, बहुत अच्छा किया आपने, बेचारी को सोने देती वैसे। और कहती दर्द दिल भाई, दोनों ने दाहिना तो मैं जरा कंफ्यूज हो जाती हूँ आप दोनों के मैसेजेस में।

ओगरी शिकारपुर से भूरो भुट्टो हमारा शो जो है वो शौक से सुन रहे हैं, तो उनको भी हम खुशामदीद करते हैं। और एम अंसारी कहते हैं कि मैंने जिस दिन स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की, मैं उसी दिन समझ गया था कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हाँ भाई, ये थोड़ा डीप हो गया, लेकिन बात सच है।

ओके जी, आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो बताइए जरा किन किन लोगों ने YGH ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करते करते आप लोगों को कितना अच्छा रिजल्ट मिल चुका है, ये आप मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि भाई जान आप इस्तेमाल कर रहे हैं YGH ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये गाना भी मेरा फेवरेट है। आज मैंने कोशिश करी है कि मैं अपनी पसंद के थोड़े से गाने लगाऊं ताकि समझ रहे ना।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मुल्क में निकल समूह दहशत गर्दन के
2: तहजीब व सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM 88 की आवाज।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: लिबाफ जो चवण हो तो जंग लाइ हर वक्त तैयार रहंदड़ मुल्की अमरीका से मुयसर गालियों करे सके तो परदेही वजीर अब्बास राखची चयो तो अमरीका के गालियों जारी रखने की दरख्वास्त ना कई अमरीका से मुआदो गडल बुनियादन से ही थी सके तो अब्बास राखची मौजूदा सूरत हाल से गाल ओमान पौतन।
1: सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां राब्तो बिन तरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल ते ॻाल्हियूं बिन्ही अॻवाणनि अमेरिका ईरान विच में हलंदड़ ॻाल्हियुनि जो बि जाइज़ो वरितो बिन्ही अॻवाणनि बहिरी रस्तनि जी हिफ़ाज़त ऐं आज़ाद चिरपुर ऐं खिते जी सिक्योरिटीअ खे हथी ॾियण वारनि कोशिशनि ते ज़ोर भरियो।
0: सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में तकरारों तां बजना कतल प्रयालो वेझो कलोड़ा बिरादरी के बिन धुरन में झेड़ो एक जनो कतल एक जख्मी गोठ गहणो कलोड़ो में जमीनी तकरार तां धुरन में झेड़ो थी पयो गोलियों लगन के नतीजे में रहीम बख्श कलोड़ो कतल थी पयो एक जनो जख्मी थी पयो दरिया खान मरी वेझो भी गोठ आदम लाशारी में नौजवान जो गोली लगल लाश अथ नौजवान इम्तियाज लाशारी जो गोली लगल लाश गोठ भरसा जमीन त मिलो पुलिस कतल के शक हेठ टिन जड़न के हिरासत में वटी छो पुछा गाछा जारी।
1: जिकमाबाद गोठ वली मोहम्मद बहन में कारे इल्जाम हेठ चाचे हथा भाइटी कतल जवाबदार सदाम बहन नौजवान भाइटी रिहाना के कारे इल्जाम हेठ कतल कयो वाके बाद जवाबदार फरार थी वयो पुलिस मूजिब जवाबदार फरार थी वयो आहे संदस गिरफ्तारी लाइ छापा हया पिया वञन।
0: छहन महीनन का तकरारी बनल कराची बार एसोसिएशन जो चूंडू अज जारी सदारती उम्मीदवार लाए आमिर नवाज वड़ाच जीएम कोराई असदुल्ला शाह में चोटी के मुकाबले जा इम्कान नायब सदर के अहदे से आमिर शहजाद ऐवान इरफान कीरियो मोहम्मद हारून कोसो मोहम्मद इरफान नज़ीर हुसैन शहर किस्मत आजमाए रहा पेरों भेरो वोटिंग बायोमेट्रिक जरिए थी रही है।
1: सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में ज़रई पानी की खोट खिलाफ़ आबादगारन जो एतजाज टंडो गुलाम हैदर में अहम वाह पानी खोट खिलाफ़ आबादगारन जो बदीन रोड से धरणो मुबारकपुर के मूसा आला आबाद शाख में पानी की खोट खिलाफ़ आबादगारन जो मुजाहरो नंदो में कढ़ण सबब सब डिवीज़न के वाहन में पानी की खोट खिलाफ़ आबादगारन जो एतजाज पानी फराहम करण जो मुतालबो।
0: मीरपुर माथिले में हारण हणन ए गाड़ी के क्रॉस करण ता पोरित के तशद्दुद जो निशानो बढ़ाईंदड़ वडेरे खिलाफ केस दाखिल वडेरे हाजी महर मथा सरकारी फिरियाद ते केस दाखिल कयो वियो पुलिस वडेरे के गिरफ्तार करण में मुकम्मल तौर ते नाकाम बणियल गाड़ी के हारण डण ए क्रॉस करण ते वडेरे हाजी महर फहद लगारी के तशद्दुद करे गाड़ी सा घेलियो हो वडेरे हाजी महर जी मेड़ वठी अचण ते पोरित केस माफ कयो मीरपुर माथिलो जी अदालत पारा नोटिस वठण बाद दाद लगारी थाने ते बासर वडेरे मथा केस दाखिल कयो वियो।

0: कश्मीर पगारे सूरतहाल जो नोटिस वरतो आहे। सिंध हुकूमत अलॉटमेंट रद्द न कई त सख्त एहतजाज कयो वेंदो।
1: टंडो गुलाम अली में डॉक्टर सलीम आलाई के कातिलन की गिरफ्तारी लाए शहरन जो एहतजाज। सांगड़ में छह महीना अग कतल थियल डॉक्टर सलीम आलाई के कातिलन की गिरफ्तारी लाए रैली कढ़ी वही। अगवान जो चवण हो तो डॉक्टर के कतल में मुलविस जवाबदार के गिरफ्तार कर वारसन से इंसाफ किया वे।
0: फैज़गंज के यूनियन काउंसिल नगर खान शहर में पीण के पानी जो बहरान शहरी गदलो पानी वापरण सबब बीमारियों में वटजन लगा। शहरन जो चवण है पानी के खोट सबब गैस्ट्रो समेत मुख्तलिफ बीमारियों मुंह कढ़ो है। वाटर सप्लाई स्कीम देने समेत बी बुनियादी सहूलतूं फराम कई वन।
1: बख्शापुर भरसा गुडू फीडर के लगल घारो बंद न थो। घारे जो पानी जमीनू बोड़न बाद गोठन तरफ वधन लगो। इलाकेवासी सख्त परेशान घारो बंद करने जो मुतालबो।
0: टंडो गुलाम अली भरसा टायर रात टुटन सबब सुजुकी कल्टी बौरतू फोत अठ जणा जख्मी। जरदारी रोड ते हादसे में गोठ मुराद अली शाह वासण सुल्ताना लाशारी बशीरा फोतियूं। हादसे में आरिब लाशारी रजिया लैला बया जख्मी। औरतन जा मड़ जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कयो वियो।
1: ठठे जिले में तेज हवाओं से गड मिट्टी जो तूफान कच्चन घर जो छित उड़ामी वह मुहानन बेड़ी समुंड किनारे बिहारे छड़ी कारवार भी ठुक थी वो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश फकीरी एनर्जेसिक क्रीम
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
4: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
4: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

अगर आप दिन में भी थोड़ा सा आपका फेस वॉश स्किप हो जाता है तो रात का फेस वॉश कभी भी स्किप मत किया करें, वो जरूरी किया करें, क्योंकि रात अगर आप फेस वॉश नहीं करके सोते हैं तो जो पूरी रात होती है ना आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा डस्ट होता है, पोल्यूशन होती है, गंदगी जो जमा हो जाती है पूरे दिन भर की, तो वो रह जाती है, जब रह जाती है तो सारी रात आपके चेहरे पर जब आप सोते हैं तो आपके चेहरे पर जो ना एक्नी बनना स्टार्ट हो जाती है, निशानात पर जाते हैं और ऐसे निशान बन जाते हैं तो भाई कभी नहीं जाते। तो अगर आप भी इस तरह का कोई सीन नहीं चाहते तो रात को अपना फेस वॉश लाजमी करके सोएं और डी स्किन फेस वॉश लगाएं, या फिर आपने जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल करना है तो फेस वॉश करने के बाद ही आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है अपने चेहरे पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये तरीकेकार अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको यकीनन बहुत अच्छे वाले रिजल्ट मिलते रहेंगे। और साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं आप डायल करते रहिए 03-15-799-0595 उड़ी 315-79-5595 ही नंबर आ जो तांजी आसानी चलाए तां अगर पांजे करीबी जनरल स्टोर से वनो था तो तां उता वनी आराम सा डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश परचेज कर सको था, ठीक है। सो जनाब प्रोग्राम आ है वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है वाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के तावन से, आप इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।

व्हाइटिश एंड डे स्किन ब्यूटी शो में आप लोगों को वेलकम कहा जाता है और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो भाई आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। 888 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं काइंडली कोशिश किया करें कि आप हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और यहाँ पर आपके मैसेजेस हैं। इरम कहती हैं, आई लव यू सो मच मेरी दिलबर दोस्त, माँ घोर थिया। अच्छा, तमाम गाने जी फरमाइश किया और मैं कोशिश करूंगी आपका गाना लगाएंगे। और मुनव्वर अली मुगल हमारे साथ ही मीरपुर खास से कहते हैं, बहन सिद्रा मुस्कान खुश आमदीद एंड भलीकार। प्यारे भाई आपको भी खुश आमदीद एंड भलीकार कहते हैं, क्या हाल चाल यहाँ के, ठीक ठाक। दादू का हैदरी फारूक हैदर जतोई सॉन्ग मास्टर मंजूर का लगाइएगा, मास्टर मंजूर का गाना आप लाजमी सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ।

कहा दे रही है सऊ दे रही है फ्रॉम नवाब शाह सलामती शो तवाजो नाइस है प्लीज प्ले हुमेरा चना हुमेरा चना जो गानो हलाने की कोशिश कयूं था और चाचा खालिद आप हमारे साथ मौजूद हैं कहते हैं अज भी गाने जी फरमाइश आए बिल्कुल तवाजो गानो हलाइंदा से और कहते हैं सॉन्ग की रिक्वेस्ट लिंक तवा फेसबुक ते शेयर किया चलो मां दिसी बैठा थी दिलबर आप ही जवाब है मैं तो आपको ही सिलेक्ट करूंगी यार आज मैं भी उदास हूँ बस अल्लाह पाक हम दोनों की उदासी दूर करे आमीन आमीन आमीन वरियाम अली कहते हैं सिद्रा हम भी शो सुन रहे हैं आपका प्यारा शो थैंक यू वरियाम रसूलाबाद से आबिद सिंह शंबानी भाई वाले को मसला मदी ये क्या अच्छा सच में चलिए अच्छी बात है एंजॉय करिए यासीन गुडाड़ो हमारे सारे सक्रेंट से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम असा ठीक आयो उम्मीद आए तमाम भी खुश होंगे और कहते टॉपिक असान दोस्त के चूज कंदासों सिद्रा आज रऊफ मक्सी जो कलाम तो बुधराइंदा प्लीज डेडिकेट बशीर लिगारी चले मां कोशिश क्या थी भा तवांजी फरमाइश भी अलाइंदा से नदीम अली ही हमारे साथ

ओके जी नदीम भा तव्हां गाने जी फरमाइश कई आहे ठीकु आहे मां कोशिशि कयां थी तव्हांजी पसंदि जेका उहा हलाईंदासीं प्रोग्राम में और सोनी की धीअ जान में बि आ गई आगे शो में कुझु देरि के बाद में चलिए जी क्या बात है आपकी लाइफ तो मुझे लगता है बड़ी सेट है यानी घूमना फिरना इधर आना उधर जाना ये करना वो करना क्या बात है भाई चलिए एंजॉय करें और बहुत शुक्रिया अच्छा मोहम्मद जमान लिखते हैं अल्लाह आपके दिल से वो सारी थकन उतार दे जो आपने किसी को बताए बगैर बर्दाश्त की हुई है आमीन जी आमीन इंशाल्लाह और दर्दी दिल कहती है देखो बस देख ही तो रहे हैं अच्छा कुर्बान अली कमरानी भाई हमारे साथ दादू से वालेकुम अस्सलाम नाइस यू थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई आपको वेलकम करते हैं आदिल भाई आपके बेटे के लिए बहुत ज्यादा वाली दुआएं करेंगे अच्छा किशोर भाई कहते हैं ॾिस न तुझी भाभी खां डिॼां तोखां डिॼां मैडम खां डिॼां सभु खतरनाक माण्हू आहिनि वीचारो किशोर भाई फासी वियो आहे सभु

परेशानी तो लगेगी क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का जो इस्तेमाल कर रही है. अब अगर आप भी सोने लगना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश. अच्छा मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं, जेकब आबाद से खुश आमदीद करते हैं प्यारे भाई को. अच्छा चाचा खालिद कहते हैं मैजिकल टच तो व्हाइटिश लवली क्रीम देगी ना. बिल्कुल जी बिल्कुल देगी, आप इस्तेमाल कीजिए. और नियाज भुट्टो हमारा शो सुन रहे हैं शिकारपुर से, नियाज भाई आपको भी वेलकम करते हैं. अच्छा सरफराज अली सोलंगी हमारे साथ ही, हाय सरफराज भाई आपको भी वेलकम करते हैं जी. ओके जी, सो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, पोस्ट को लाइक को शेयर करते जाइए और बताइए आप कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं. और यहाँ पर जो है ना हम ले रहे हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए.

0: TAFM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है.
2: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है.
2: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए.
2: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार.
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है. फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज.
5: ॾाढो सुठो
4: जी ए एफ एम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़.

ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ जी शू भी आ चुके हैं. जी शू, आपको भी कहते हैं खुश आमदीद एंड वालेकुम अस्सलाम. ओके जी, यहाँ पर हिदायतुल्लाह अहमदानी भी हमारे साथ मौजूद, कहते हैं वैसे. हाँ सही बात है. अच्छा जी शू, आपको हमारा शो पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया. बिलाल अली आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम बिलाल, खुश आमदीद. मोहम्मद समी है, वालेकुम अस्सलाम, आप ही सदरा क्या हाल चाल है आपके. मोहम्मद समी मरी बलोच फ्रॉम मेरे खास शो सुपर सीबी ऊपर ही, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू. ओके जी, उनका अलावा है जी हमारे साथ वफा मुमताज अली खोसो. जी वफा मुमताज अली खोसो तव्हांजो मोहब्बतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया बाबा. चाचा खाले, तव्हां कॾहिं कॾहिं अहिड़ी ॻाल्हि करे छॾींदा न पोइ तव्हांजी वेगी भाइटी खे थोरी कावड़ अची वेंदी आहे. तूं सम्झा. अच्छा सनवाला बिरोई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम असलम. अदी ठीक है, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो. और साजिद अली बलोच हमारे साथ ही, वालेकुम असलम भा, तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल आहियो, सो मोहबतूं आहिनि तव्हांजूं. ओके, बहुत प्यारा गाना आप इंजॉय कर रहे हो. साथ साथ हजार भाई कहते हैं अदी आप बहुत शुक्रिया जी, आपने कुल मिलाकर मेरी तारीफ कर दी, आपको प्रोग्राम हमारा पसंद आ रहा है, सो थैंक यू सो मच. हजार भाई, आप भी वाइटेश का जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें हमें बताया करें, ताकि लोगों को पता चले कि भाई जो इतने सारे लोग हमारे साथ वो दरअसल खूबसूरत क्यों हुए हैं, क्योंकि वो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं.

अच्छा एम अंसारी लिखते हैं कि हम परफेक्ट नहीं होते, हर तरफ एक तरफ हम किसी के बेहतरीन याद होते हैं तो दूसरी तरफ कोई हमारा नाम सुनकर गुस्से में आ जाता है, कोई हमारी कुर्बत के लिए तरसता है तो कोई हमारे साए से भी दूर रहना चाहता है। कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, हम किसी के लिए एक मिसाल तो किसी के लिए एक सबक होते हैं। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी जो इनाम हमारे साथ बात शेयर की और वाकई ऐसा ही है। ओके, आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको मैं जरा सा बता दूं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएगी और खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ आपकी खूबसूरती को जो है ना वो मेंटेन भी रखने वाली है, क्योंकि ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार हुआ प्रोडक्ट है। इसके अंदर विटामिन ई बीड्स है और माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है जो कि आपके चेहरे पर जो रिंकल्स आ जाते हैं, आंखों के हल्के आ जाते हैं, आपके डार्क स्पॉट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन इतनी ग्लो करने लगेगी। जैसे जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है वो देख रहे होंगे जनाब वीडियो में कि कितनी जो माई है वो अच्छी और गोरी हो गई है। तो आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, से आप भी अच्छी और गोरे हो जाए, समझ रहे हैं? और सिर्फ गोरो रंग न मिलंदो बाबा, तव्हांजा चेहरे जा दाणा खत्म थी वेंदा, निशान खत्म थी वेंदा, तव्हांजी स्किन क्लियर थी वेंदी, बेदाग थी वेंदी, ऐं पोइ गोरी थींदी।

अच्छा हिदायत ला के दे दी, कराची की बिरयानी खाओगी? मैं खा रहा हूँ, खाएं जी खाएं बिरयानी बिरयानी। अच्छा, और हमारे साथ हैं जी ये फहीम, कहते हैं कि हमसे रखिएगा तवक्क ना फरिश्तों जैसी, हम तो इंसान हैं औकात पे आ जाते हैं। सही गाल जी। मोहम्मद समी कहते हैं हम भी आपका शो रोज सुनते हैं, मैं रुखसार मरी का भाई हूँ, आप ही ओके ब्रो, आपको वेलकम करते हैं।

फहीम आपको बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसा ही हुआ था। क्या बात है, क्या बात है। पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए और शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए मित्रों। अच्छा ये मेरे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी सैटरडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्य सिस्टर सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं। टॉपिक दोनों चाहिए, सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट लड़कियों को। अरे वाह, गाने तो अच्छे लगा रही हो, सच्ची बताएं। वैसे हमारे साथ हमारी ये प्यारी फजीला सिंधी मौजूद है, बहुत शुक्रिया फजीला। ओके जी, और हमारे साथ किशोर भाई कहते हैं अदा मंडे जो भले कजो, भले कजो बाबा मोकल अव एंजॉय भी कजो, ठीक है। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी तव्हां अगरि लाड़काणे अचो या लाड़काणे जे आसपास आयो या वैसे या हिकड़ी ॻाल्हि त कॉमन थी वई आहे त अॼुकल्ह जिते बि तव्हां रहो था उते तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे। ऐं अगरि नाहे अञा अवेलेबल थी त उन लाइ तव्हां थोरो कष्ट कयो त तव्हां अवेलेबल करायो। ऐं तव्हां अवेलेबल कराइण लाइ छा कंदा, तव्हां डायल कंदा 03-15-799-0595 ॿुड़ी 315-79-5595 हीउ नंबर तव्हां डायल कयो जी तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते, तव्हांजे एरिया में, तुम्हारे गोठ में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे पाड़े में, हर जगह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल थी वने, ठीक है। सो अवेलेबल करायो आई खूबसूरती की बधाईंदा रहो। हिदायतुल्ला कहते हैं कि दूसरों की जिंदगी ऐसी है, घूमना फिरना हमारी, घर से काम और काम से घर, असांजी भी सेम बाबा सेम। अच्छा वफा मुमताज अली खोसू हमारे साथ हैं, आपको खुश आमदीद करते हैं प्यारे भाई। बिलाल अली कहते हैं अभी अफवाह कौन फैला रहा है, मुझे तो आप ही लग रहे हैं। ये चीज मैंने पहली बार सुनी, तो इस अफवाह को जरा हाइड कीजिए, लोगों की नजरों में नहीं आनी चाहिए, समझ रहे। अच्छा दर्दी दिल आप हमारा शो सुन रही हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल भी कर रही हैं। चलें जी कल्ला फरमाइश कीजिएगा अगर आज प्रोग्राम बढ़ गया है तो। अच्छा मौलाई मुजाहिद बोजार हमारे साथ मौजूद है, शायद आपके कुछ कमेंट्स ऊपर भी चले गए हैं, तो कहते हैं सिडो जी 4 दिन से मेरा गाना आप नहीं लगा रही हैं, क्यों मैंने भैंस चुराई है क्या तुम्हारी, हिकड़ी गाल तो भैंस तो आए कोन असांखे, बाकी गानो तव्हांजो हलाईंदासीं बाबा खारी वेंदासीं। अच्छा अब्दुल गफ्फार भाई हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद प्यारे भाई। अच्छा बिलाल कहते हैं कि सोच समझकर किसी को सजदों में मांगा करें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसे ही बुलाने के लिए सजदों में रोना पड़ जाए। सही था चो अल्लाह।

वाह वाह वाह वाह, अगरि हिकु दफ़ो कंहिंखे तव्हां दिलि ॾेई छॾी त पोइ बाबा वापसी जो जेको रस्तो आहे न उहो बंदि थी वेंदो आहे. और शोनी तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे, थैंक यू सो मच, इंजॉय कयो बाबा पंहिंजी ज़िंदगी खे. और मुनवर मुग़ल भाई कहते मेरी बेटी गाज़िया आपको सिंधड़ी आम गिफ्ट भेजना चाहती है, तो अदी कैसे भेज सकते हैं? नहीं भाईजान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप बस मेरे हिस्से के खा लीजिएगा और दुआ करें जो वैसे आम में थोड़ी खाती भी कम हूँ, तो थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बतों का. और हमारे साथ हैं जी इमदाद जतोई भाई, इमदाद जतोई और अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई की फैतला जतोई, आप हमारा शो सुन रहे हैं, सही भाइयों को वेलकम करते हैं. और जी हैं हैदर दादू का हैदरी, फारूक हैदर जतोई, सॉन्ग मास्टर मंजूर जो बुधरा है, जो मास्टर मंजूर हले पयो बाबा बुधो. और इमाम डिनो सोलंगी फ्रॉम मटियारी सलामदी, गानो बुधरा जो शेनिला गुल जो बिल्कुल भालाइण जी कोशिश कंदासी, टाइम बची वियो. और ये मौजूद है सलाम आप अच्छा कहते हैं हमारे यहाँ तो बहुत आंधी आई है, फ्री में मेकअप हो रहा है और सब आ जाओ. 78 मोरी मीरपुर खासे राजा हमीर चंद है किशोर कुमार और हीरा लाल फौजी सवाई लाल प्ले करें जिया मुखे कुठई जानी. चले टाइम तो खैर अज खत्म थी चुको आ वरी ताजो गानो बुधी वठंदासी, सो एंजॉय कयो बाबा फ्री वारो मेकअप. पर अगर तव्हां वाक़ई ख़ूबसूरती हासिल करणु चाहियो था त पोइ तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणो पवंदव. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु करण खां पोइ तव्हांजी ख़ूबसूरती वधी वेंदी बाबा, चांस सफ़ा वधी वेंदव ख़ूबसूरती जा. सो ख़ूबसूरती वधण सां गॾोगॾु तव्हांजी जेका स्किन घणी सेंसिटिव आहे न, खोड़ माण्हुनि जी स्किन सेंसिटिव हूंदी आहे, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे तव्हां सेंसिटिव स्किन वारा माण्हू बि लॻाए सघो था, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे डॉक्टर जी निगरानी जे अंदरि तयारु थियल आहे, हिन जे अंदरि कोई बि केमिकल

मोलाई मुजाहिद बोजार तमाजा कुछ कॉमेंट ऊपर हल्या वाया सोने जिला माजरत कहूँ था। नूर चांदो कहते वाह क्या सॉन्ग है दिल ले जी वे दी वही धक धक बणियो तो ताके ला केड़े भाजी फरमाइशी सोमू सटक करे लगाए शेड्यूल लिस्ट में। न बाबा तवा सिंगार भले न कयो तवा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो डी स्किन जो फेस वॉश लगायो आई साण तवा वाइट एश लवली क्रीम लगायो बस बाबा सफा या कम जेको वीआईपी थी वेंदो सो तवा लाजमी इस्तेमाल करे दिसजो।

अच्छा मोहम्मद समी थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं। बिलाल कहते कि जेको साख वधिक प्यारो हुंदो आए अक्सर दर्द तकलीफ उन मां ही मिलंदा आए। बिल्कुल सही था चो। मामा जवान कहते हम आइसक्रीम भेजेंगे तो रास्ते में पिघल जाएंगे, इसीलिए समझ गए होंगे। हाँ जी बिल्कुल, दुख में भी खिलंदा कयो जी, असा खिलंदा आयो दुख में भी, बस डसीना आयो तो थोड़ो उदास आयो, बाकी बटरी जगह वा निकतल ही हुंदी आ है। सो हाने सानी वने जो टाइम भी थियो, बाबा एडो जल्दी टाइम गुजरी वयो। ज्यादा जो केतरो तो मथो वणंदी आए छोकरी, मथो आ तरे तरणा थी नी मन में खबर पई थी तो मुखे मथो आए, समझो था वरी असांजी मुलाकात थे पई बाबा 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सही हाओ टाइम खत्म थी वयो आहे, लियाकत बासी भात आंजो मोहब्बतूं आहे। ओके सो पांजो ओ ही दो सरो ख्याल रखना है जी, स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं वाइट एज जा प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदा रहिजो, ठीक आहे। किथे का गलती थी हुजे त माज़रत कयूं था बाबा, जिनजा मैसेजेस रहिजी विया जा गाना रहिजी विया, सभिनी खां माज़रत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे सिलसिलामत सां सलामत, अलाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। 5 बजे मिलूं था।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Amuran dehshatgardan ke khatam kare bindu. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नायब सदर जे डी वेंस ए परदेही वजीर मार्को रोबियो के ईरान से सफारती राबता ए गाल जारी रखने की हिदायत पान ते हमले की सूरत में ईरान के धरती तथा मिसारण की भी धमकी दे छी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है अमरीकी फौज के मुंह कतल करण की सूरत में ईरान के धरती तथा मिसारण जो चई छो है। फौज ईरान से 1000 मेजाइल फैर करण ला तैयार है। तेहरान के साजिश तोते हटण पौ। काब जंग ईरान की हथियार फिटा करण से खत्म नी पोते न हटंदी। अमरीका मुआदो टोड़ो तो जिम्मेवार पान हों। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ है तो जंग लाए हर वक्त तैयार रहंदड़ मुल्क ही अमरीका से मौसर गाल करे तो। परदेही वजीर अब्बास राखची है तो अमरीका के गाल जारी रखने की दरख्वास्त ना कई। अमरीका से मुआदो गडियल बुनियादन से ही थे तो। अब्बास राखची मौजूदा सूरत हाल से गाल ओमान पहुंतल।

0: एकतानवे वाद बाद अमरीका जहाज बरदार बेड़ा ईरान वेझो मुकर कर छ्या। यूएसएस इब्राहिम यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ईरान वेझो मुकर वो सेंटकॉम मूजिब अमरीका जहा वी का जंगी बेड़ा विच ओभर के समुंड में गश्त कर रहा है। ईरानी परदेही वजारत के तर्जमान इस्माइल बकाई है तो ईरानी फौज के दुश्मन की चुरपुर से नजर है। फौज मुल्की सलामती आवाम के तहफुज के यकीनी बनाए रही है। ईरानी कौम के पैं फौज से फख्र है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबतो बे तरफन लागापन समेत खिते की मौजूदा सूरत हाल से गालू बिन्हीं अगवाणन अमरीका ईरान विच में हलंदड़ गालन जो भी जायजो वरतो। बिन्हीं अगवाणन बहरी रस्तन की हिफाजत आजाद चुरपुर खिते की सिक्योरिटी के हथी डण वाल कोशिशन से भी जोर भर। सिंध के मुख्तलिफ शहर में तकरारों तां ब जणा कतल प्रयालो वेझो कलोड़ा बिरादरी के बिन दुरन में झेड़ो एक जणो कतल थी वयो एक जख्मी गोठ गहणो कलोड़ो में जमीनी तकरार तां दुरन में झेड़ो थी पयो गोलियों लगण के नतीजे में रहीम बख्श कलोड़ो मारजी वयो एक जख्मी थी पयो। दरिया खान मरी वेझो भी गोठ आदम लाशारी में नौजवान जो गोली लगल लाश त नौजवान इम्तियाज लाशारी जो गोली लगल लाश गोठ वेझो जमीन त मिलो। पुलिस कतल शक हेठ टिन जणन के हिरासत में वठी छो पुछा गाछा जारी। जकबाबाद के गोठ वली मोहम्मद बहन में कारा इल्जाम हेठ चाचे हथा भाइटी कतल जवाबदार सदाम बहन नौजवान भाइटी रेहाना के कारा इल्जाम हेठ कतल कयो। वाके बाद जवाबदार फरार थी वो पुलिस मूजिब जवाबदार फरार थी वो है संदस गिरफ्तारी ला छापा हया पा वन। छहन महीनों का तकरारी बनल कराची बार एसोसिएशन जो चूंडू जारी सदारती उम्मीदवार लाए आमिर नवाज वड़ाइच जीएम कोराई असदुल्ला शाह आमू सामू नायब सदर के अहदे से आमिर शहजाद अहमान इरफान कीरियो मोहम्मद हारून खोसो मोहम्मद इरफान नजीर शर में मुकाबलो पेरों भेरों वोटिंग बायोमेट्रिक जरिए थी रही है। सिंध के मुख्तलिफ शहर में जरई पानी की खोट खिलाफ आबादगार एहतजाज टंडो गुलाम हैदर में पानी खोट खिलाफ आबादगार बदीन रोड से धरणो हो। मुबारकपुर के मूसा अलाहाबाद शाख में भी पानी खोट खिलाफ आबादगार मुजाहरो निंदो में कढ़ण सब डिवीजन के वाहन में पानी खोट खिलाफ आबादगार एहतजाज कर पानी फराहम करण जो मुतालबो। मीरपुर माथिले में हारण हणण गाड़ी के क्रॉस करण पोरत के तशद्दुद जो निशानो बढ़ाईदड़ वडेरे खिलाफ केस दाखिल वडेरे हाजी खान महर मथा सरकारी फिरियाद ते केस दाखिल कयो वयो। पुलिस वडेरे के गिरफ्तार करण में नाकाम गाड़ी के हारण डण क्रॉस करण ते वडेरे हाजी महर फहद लगारी के तशद्दुद करे गाड़ी से गेलियो हो। वडेरे हाजी महर की मेड़ वठी अचण ते पोरत केस माफ भी कयो हो। मीरपुर माथिलो की अदालत पारा नोटिस वठण बाद दाद निगारी थाने ते वडेरे मथा केस दाखिल कयो वयो। घोटकी में नौजवान जाल समेत मुबैना तौर अगवा वालदेन जो एहतजाज बाजियाबी जो मुतालबो गोठाने गुलाम रसूल शेख जो जाल से गड पुट नूह की बाजियाबी ला एहतजाज वालदीन मूजिब पुट अली हसन सईदा सा पसंद की शादी कई हुई नारी जा वारिस नाराज हुआ पुट घरवारी के डॉक्टर डा वी वो हो बिन्हीं के बाजियाब कराए वे। डीपलो में बकरियों चोरी करे फरार थींदड़ मुबैना चोर गाड़ी तां किरी फौत गाड़ी जो ड्राइवर गिरफ्तार।
1: आज तुम जीतेगी या मेरी भूख
0: कोशिश कंदे मुबैना तौर गाड़ी में किरी फौत थियो ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस मूजिब गाड़ी तां किरी फौत थियल चोर की सुणप गोट पतड़ियार वासी रसूल बख्श दल तौर थी है। चौपाए माल की चोरी में इस्तेमाल थियल गाड़ी जो गिरफ्तार ड्राइवर टंडो बागो वासी है। सांगड़ में होर जमात जो सरकारी जमीनों बासरन के अलाट करण खिलाफ एहतजाज मुजाहिरन जो मकामी मानन के जमीनों देण जो मुतालबो। होर जमात के चयन खलीफन की अगवाणी में होर जमात देह जेंदो में एहतजाज कयो मुजाहिरन मौजे पीर पागारे सूरत हाल जो नोटिस वरतो है। सिंध हुकूमत अलाटमेंट रद्द न कई तो सख्त एहतजाज कयो वेंदो। ٹنڈو غلام علی میں ڈاکٹر سلیم آرائی کے قاتلن کی گرفتاری لائے شہرن جو احتجاج سانگڑ میں چھ مہینہ اگ قتل تھل ڈاکٹر سلیم آرائی کے قاتلن کی گرفتاری لائے ریلی کڈی وئی اگوانن چھو تو ڈاکٹر کے قتل میں ملوث جوابدارن کے گرفتار کرے وارسن سے انصاف کیا وجے فیضگنج یونین کونسل ننگر خان شہر میں پینے کے پانی جو بحران شہری گتلو پانی واپرن سبب بیمارن میں وٹجن لگا شہرن جو چون ہے تو پانی کی کھوٹ سبب گیسٹرو سمیت مختلف بیمارن منہ کڈیو ہے واٹر سپلائی اسکیم دین سمیت بھی بنیادی سہولتوں فراہم کی وجن بخشاپور بھرسا گڈو فیڈر کے لگل گھارو بند نہ تھو گھار جو پانی زمینوں بورن بعد گوٹھن طرف ودھن لگو علاقے واسی سخت پریشان گھارو بند کرن جو مطالبہ ٹھٹھے ضلع میں تیز ہواؤں سے گڈ مٹی جو طوفان کچن گھرن جو چھتیوں اڑامی ویوں موہانن بیڑیوں سمندر کنارے بہارے چڈیوں کارو اماں ٹپ تھی ویو چین کے مختلف علاقوں میں بھی برساتن بعد آئل بوڈ تباہی مچائے چڑی پانی کے تیز وہکرن میں کیتری گاڑیوں گھر لڑی ویا

0: यूनान खां जर्मनी वेंदड़ जहाज जी उॾाम दौरान दरी भॼी पई। दरी भॼण बाद मुसाफ़िर दरीअ मां ॿाहिरि किरंदे किरंदे बची वियो। जहाज जे हंगामी लैंडिंग कराई वई। जर्मन मीडिया मूजिबि उॾाम दौरान जहाज इंजन जो हिकु टुकड़ो निकिरी दरीअ सां टकराइजी वियो, जंहिं सबबि वाक़ियो पेश आयो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद।
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
5: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: चली दिल खत्म कर इतने मामलों

0: सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कणक जखीरो कंदड़न खिलाफ कार्रवाइयों केतरा ही गोदाम सील हजारें बोरियों हथ बान सईदाबाद में मुख्तलिफ गोदामन ते छापा गैर कानूनी तौर जखीरो कल कणक जो 5000 बोरियों हथ कई व्यू टे गोदाम सील कया व्या खोड़ा में भी कार्रवाइयों कर 10 गोदाम सील कया व्या मदेजी में भी कणक के गोदामन ते छापा केतरा ही गोदाम ए दुकान सील कणक जो जखीरो कल हजारें बोरियों हथ शदादकोट ए सेठारजा में भी अमलदार गोदामन ते छापा कणक जो हजारें बोरियों हथ सांगड़ में हुर जमात जो सरकारी जमीनों बासरन के अलाट करने खिलाफ एहतजाज मुजाहिरन जो मकामी मानून के जमीनों देने जो मुतालबो हुर जमात के चयन खलीफन की अगवानी में हुर जमात देह जियंदो में एहतजाज कयो मुजाहिरन मौजे पीर पागारे सूरत हाल जो नोटिस वरतो है सिंध हुकूमत अलाटमेंट रद्द न कई तो एहतजाज कयो वेंदो कराची में 6 महीनों दौरान कुत्ते की चक जा 25,000 का वधिक केस रिपोर्ट सिविल अस्पताल कराची में 7,541 जना अस्पताल में 7,175 केस एक समाजी अस्पताल में 10,500 केस रिपोर्ट थे रेबीज के 17 केसन में 17 ही मरीज फोत थी चुका बख्शापुर भरसा गुडू फीडर के लगल घारो बंद न थो घारे जो पानी जमीनों बोड़न बाद गोठन तरफ वधन लगो इलाके वासी सख्त परेशान घारो बंद करने जो मुतालबो ठठे जिले में तेज हवाओं से गड मिट्टी जो तूफान कच्चन घर जो छितियं उड़ामी व्यू मोहानन बेड़ियों समुंड किनारे बिहारे छड़ी कारवां वार टुप थी व्यो चीन के मुख्तलिफ इलाकन में भी बरसात बाद आयल बोट तबाही मचाए छी पानी के तेज वहकर में केतर गाडिय घर लुढ़ी वया यूनान का जर्मनी वेंदड़ जहाज की उड़ान दौरान दरी भनी पई दरी भजन बाद मुसाफिर दरी में बाहर किरंदे किरंदे बची वो जहाज की हंगामी लैंडिंग कराई वही जर्मन मीडिया मूजिब उड़ान दौरान जहाज के इंजन जो एक टुकड़ो निकरी दरी से टकराजी वो हो जै सबब वाक्य पेश आयो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: ढोला

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जेडी वेंस ऐं परदेही वज़ीर मार्को रोबियो खे ईरान सां सफ़ारती राब्ता ऐं ॻाल्हियूं जारी रखण जी हिदायत। पाण ते हमले जी सूरत में ईरान खे धरतीअ तां मेसारण जी बि धमकी। अमरीकी सदर चयो आहे त अमरीकी फ़ौज खे मुखे क़तल करण जी सूरत में ईरान खे धरतीअ तां मेसारण जो चई छडि॒यो आहे। काब जंग ईरान जी हथियार फिटा करण सां ख़त्म न थींदी, पोइ ते न हटंदासीं। अमरीका मुआदो टोड़ियो त ज़िमेवार पाण हूंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ चयो आहे त जंग लाइ हर वक़्त तयारु रहंदड़ मुल्की अमरीका सां मोसर ॻाल्हियूं करे सघे थो। परडे॒ही वज़ीर अब्बास राखची जो चवण हो त अमरीका खे ॻाल्हियूं जारी रखण जी दरख़्वास्त नाहे कई। अमरीका सां मुआदो गडि॒यल बुनियादनि ते ई थी सघे थो। छिकताण में वाद बाद अमरीका जहाज बरदार ब बेड़ा ईरान वेझो मुक़रर करे छॾिया। USS इब्राहिम ऐं USS जॉर्ज डब्ल्यू बुश खे ईरान वेझो मुक़रर कयो वियो। सेंटकॉम मूजिबि अमरीका जा 20 खां वधीक जंगी बेड़ा विच ओभर जे समुंड में गश्त करे रहिया आहिनि। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त ईरानी फ़ौज जी दुश्मन जी चुरपुर ते नज़र आहे। फ़ौज मुल्की सलामती ऐं अवाम जी तहफ़ुज़ खे यकीनी बणाए रही आहे। ईरान अमरीकी हमलनि में 17 शहरनि जे शहीद थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरान जे सिहत वारी वज़ारत

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by D is
2: in beauty. जी वो सेल करे चल दो आते यो बे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आहे आई पाकिस्तान पेनल कोड जे सेक्शंस 404 खान 409 में ही ऑफेंसेस जे केन एनर्जी पनिशमेंट्स भी बुधाई वई आहे इन जा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी थी सगन था इन सा वाबस सा असन सग स्टूडियोज में एडवोकेट शहबाज हफीसा मौजूद आइन 10 इयर्स का वठी तकरीबन ही जे कहत एडवोकेसी सा वाबस ताइन एज वेल एज लेक्चर लॉ कॉलेज में तमाम सुठी इन वे नॉलेज है अबाउट द लॉ तमाम घड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी रिटर्न क्वालिफाई थे शहबाज साहब वेलकम टू द स्टूडियोज
3: थैंक यू वेरी मच आफ्टर लॉन्ग टाइम
2: यस लॉन्ग टाइम सो शहबाज साहब टॉपिक थे अचू पा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अक्सर तिठो है अमानत में खयानत जो है अजकल थोड़ा बदी वो है कें वी कई शे अमानत रखाई पे वे तो चिप ठीक है यार ही तो भलाई थी वही जो वे अची वही मुझे यूज भी करनी पवे जे अमानत रखाई है पो वो जो पे रिकवर कंदो वते तो इन सब का पैरिया असा जो व्यूअर्स के ये बुधायो तो जो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है जो लीगल अगर असा डेफिनेशन दिसूं
3: एज पर बाबर अगर लीगल डेफिनेशन दिसो जो पाकिस्तान पिनल कोड में लिखल है वो लिखल है कि व्हेन अ प्रॉपर्टी इज हैंडेड ओवर टू समवन एंड दैट पर्सन इज यूजिंग दैट प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन पर्पस और ही इज अ डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी are you using of the property illegally giving loss to someone and gaining illegal gain to himself that is called criminal breach of trust mana ke manu ko amanat me ke dini ho ja amanat to she ta hin jo khayal rakha jo un ke penje purpose la istemal kare chade un ji khayanat kare chade that definition is called that concept is called criminal breach of trust
2: acha criminal acha criminal misappropriation and criminal breach of trust in a binet me cha difference
3: baba these are two different and distinct concepts misappropriation is a dishonest misappropriation
2: theek hai
3: badniyati sa ke she ke kai she mili hoje ya kai she dini hoje ya handover thi hoje voluntarily pero the question na yahi kayo ta what kind of things are being disappropriated ya misappropriated
2: yes
3: I wo kedi she jo ko trust break to the pyo so I will include here the only movable property is being misused by jeke sa chalo wo property that can be shifted from one place to another place that called movable property
2: all right
3: hit the misappropriation movable property jo thindo movable property kai bhi thi sake thi from cell phone to motorbike anything from promissory note to bank checks take up agar ta ja secret documents hojan ya private documents hojan unan kha vathi kare kai bhi edi she jeke ta ke manu ke interested kayo ta pya jeke amanat taur voluntarily rakh raha ho ta pya but later on he is using that thing for his own purpose or misusing it
2: all right
3: or whether he disposing of dispose matlab ya to ne ja to ne ke kharch to kare chade yaar he sell out him so somewhere else and jo ko bhi gain to the paan vat to rakhe pyo that thing is called criminal breach of trust me bhi vane di or misappropriation of property me bhi vane
2: acha ta ji che movable property je ki a to wa je ka to me che pai hane in me documents ji mu shuruaat me intro me bhi panjo budhayo to documents for example agent vate rakh raha vena aksar to ade to brokers vate ai ue disanda ain to baba da ਵੀ ਅਗਰ ਵਧਿਕ ਮਿਲਨ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰੇ ਛੜਦਾ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਜਿਕਾਨ ਹੋਣ ਜੀ ਯੈਸ ਵਿਦਾਊਟ
3: ਕੇ ਮਾਣੋ ਜੀ ਜਿਕਨ ਖਬਰ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
2: ਜੀ ਜੋ ਆਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਮਾ ਤੋ ਜੋ ਬਸ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲੇ ਪਈ ਤੁਜੀ ਸ਼ੇ ਮੂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰੇ
3: ਸਰੀ
2: ਮਿਸਟ੍ਰਸ ਨਾ ਹੈ
3: ਯੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟ੍ਰਸਟ ਚਾਉਂ ਹੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੇ ਟ੍ਰਸਟ ਕਰੇ ਦਿੰਦੀ
2: ਯੈਸ
3: ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੇ ਟ੍ਰਸਟ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਿਆ ਆਏ ਉਹ ਸ਼ੇ ਅਗਤੇ ਤਾ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੇ ਛੜੀ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੇ ਅਜਾ ਤਾਂ ਇਨਫਾਰਮ ਨਾ ਕਿਉ ਤੋ
2: ਸਹੀ
3: ਐਂਡ ਦੈਟ ਮੈਨ ਸਟਿਲ ਇਨ ਅ ਕਨਸੈਪਟ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਏ ਬੀ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਸੋ ਉਹਨੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਸਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਸਟ ਦੀ ਭੰਗੜੀ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਸਟ ਕੇ ਟੋਣ ਕੇ ਵੀ ਕਾਲਡ ਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟ੍ਰਸਟ
2: ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੇ ਅਗਰ ਅਚਾ ਚੌਂਤ ਪਿਆ ਜੇ ਕੋ ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਮੈਂ 404 ਟੂ 409 ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਥੋੜਾ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਵਠੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆ ਕਿਹੜਾ ਐੜਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫੈਂਸਸ ਹਨ ਜੇ ਕਿਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟ੍ਰਸਟ ਪੇ ਅਚਨ ਪਿਆ
3: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਮੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਨ ਵਚਨ ਤਾਂ 403 ਖਾਂ ਵਟੀ ਡਿਸਓਨੈਸਟਲੀ ਡਿਸਓਨੈਸ ਮਿਸਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 403, 404, 407, 408, 409 इहो पार्टिकुलर जेके सेक्शन्स आहिनि दीज सेक्शन्स आर एलोकेटेड फॉर द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी जंहिंमें तव्हांजे डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन अचे थी पई प्लस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अचे थी पई हैंड ओवर टू द प्रॉपर्टी टू सर्वेंट्स टू क्लार्क्स टू एजेंट्स ऐं टू पब्लिक ऑफिसर ऐं उहो हुन जी अगरि मिसयूज़ करे इहे सॼे हिन ज़िमिरे में अचनि था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ट्रस्ट में ऐं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी में
2: असा लेट सपोज अज्यूम कयो असा का शे जेका इते कें वटे जेका इत बतौर अमानत रखरायो पिया फॉर एग्जांपल असा मोबाइल फोन के डिसी वठो ठीक है और असा जो भाई मोबाइल फोन ता पाण वटे रखो कला खा बाद में माछा पे ता मथा पे उन जो मिस यूज पे करे छरे उन के पासवर्ड भी टेडी एक असा दिस छरे आई उन जो मिस यूज के उन मां नंबर्स कडी वते डेटा कडी वते तो यो इन में अचे पियो
3: क्लियरिफाई कनम के अगर प्रॉपर्टी अगर काई भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पियो उन लाए ट्रेशिंग काते ट्रेल कलन काते चार निकलन बरा लेस पर माय ओपिनियन जको मा पढ़े हुआ तो उनमें चार शिंग ट्रेशिंग रिक्वायर्ड सबका पेरो ये होंदी तो प्रॉपर्टी दैट इज गिवन बाय समवन वोलंटरली डिनल हो जे वोलंटरली इंटरेस्टेड हो जे इंटरेस्टेड जो मतलब आ उनके असा अमानत तौर रख रहे
2: ऑलराइट
3: सेकंड दैट पर्सन हैज इलीगली यूज्ड it for its own purpose whether the contract expressly or impliedly implied jo expressly implied jo matlab ya ta sa verbally unan ke wa she dini ho ji
2: sahi
3: te rakho paan wat asa ta ke concerned time te reasonable time te asa ta ko vati chhadda se ya impliedly ho ji implied mana actions and conduct jo thu jaisa isharatan chano khani chado ya sa isharatan chano asa ke dei chado ya sa isharatan chano ne ke te rakho that is implied contract true that mean once again मैं रिपीट तो क्या दैट मैन हैज वेदर ही हैज यूज इट अगेंस्ट द लॉ अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट वेदर ही हैज डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी ठीक है अगर इन टिनिन जिमरन में अगर अचे तो दैट मैन हैज कंडक्टेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड डिसअप्रोप्रिएशन डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द
2: प्रॉपर्टी
3: सर हाँ अचो ना तुम्हारे दिनल मिसाल से अगर तुम्हारा दोस्त है तुमने दिनी है शे अगर वो नॉर्मली तुम्हारे सामने पासवर्ड खोले तो घर कॉल करे तो उनका पो कोई भी मैसेज आ कम्युनिकेट करे तो टुवर्ड्स फैमिली मदर थी वही फादर थी वाइफ थी वही सिस्टर थी वही दैट डजंट मैटर वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में
2: असा सामू जने करे
3: पे सामू ही न करे बट यू नो दैट के हन अगर कॉल कई भी नी घरी के हाने ते छा थियो डिस्ट्रस्ट के तो क्रिएट थे मिसट्रस्ट के तो क्रिएट थे के अगर वही फोन खणी करे वही अगर को एक्सटॉर्शन मनी जे लाए के ता जो फोन यूज करे एक्सटॉर्शन मनी जे करे कॉल तो करे तो इन ही नंबर ते या थ्रू ता जे या मैसेज तो करे टेक्स्ट तो करे तो मखे इलीगल मनी पुजायो
2: ओके
3: ठीक है ना नाउ ही इज अ ब्रेक योर मिसट्रस्ट को ना ता जे फोन जो गलत इस्तेमाल
2: ऑल राइट आई ने जो असा इन की एग्जांपल लेई ता सगु असा जो के मोबाइल वॉलेट्स हुंदा है जेएस के शाइजी पैसा में पैसा हो जन ओने वन फॉरन ट्रांसफर करे छरे
3: ता उने के दिनो उनो ता पैसा खणी ट्रांसफर करे छरे दैट इज अ मिसट्रस्ट दैट इज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
2: ओके ओके ओके सो कुछ मैसेजेस आया एंड फीडबैक आयो है असा वे शामिल कंदासी ऑडियंस या भी सवाल जे कंदे इंक्लूड क्यों पिया एकडो ई वॉइस नोट आए अचो तो बुधो पिया
4: अस्सलाम वालेकुम मैं तो ये बसन ताम प्रोग्राम बुधी रहो हूं त ताम टॉपिक से रिलेटेड मुझे भी कोई सवाल आ त अगर कैसा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थी वने त एफआईआर की दर्ज कई वने आ उन लाए केड़ा डॉक्यूमेंट या सबूत की जरूरत पई सके दी असन और मते असन बताएंगे
2: ठीक है अदा तैयब सर इन्हें चाहिए अगर थी वने तो यो पहले तो असा अन्या थोड़ो मां चाहें पे तो असा के एग्जांपल्स दियो तो जी असा जो कांसेप्ट थोड़ो क्लियर थिए तो इन इन के अलावा भी केड़ा एग्जांपल सी सगन बे जी असी हवालो रिनो सी पीपीसी जो आई पीपीसी में जो का 404 में जी लिखला डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो का है डिसीट पर्सन इन जो की थी सके तो केजी विल आ है उन में जो का खुर्दबुर्द कई वने पई उन जी जकी छडल प्रॉपर्टी आ उन ते जो का अख
3: जी मां वंस अगेन बुधा तो जी असा ते जिक्र कयो से वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी या मिस ट्रस्ट या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वो आकर प्रॉपर्टी आए केड़ी वंस अगेन रिपीटिंग दैट थिंग फॉर द ऑडियंस जिके सा के दिसे थी जिके सा के बुधे थी उनन जे ला अगर जो विच में भी अगर सा के के ज्वाइन कियो तो जस्ट फॉर देयर रिपीटेशन फॉर देयर सेक ऑफ रिपीटेशन मां वो शब्द बुधा दा मूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी में सपोज अगर को मानु आ के जो सर्वेंट आ घर में अकेलो रहे तो कुराड़ो आ या कुकुराड़िया ओल्ड एज एंड रहन था पिया उनकी फैमिली बाहर शिफ्ट थे हाने वो चई तो वे सर्वेंट के या पे किनारे के चई तो वे तो मुझे अकाउंट में इन टाइम 20 लाख रुपया पिया अव जी मुझी गाड़ी आ अगर मुख्य कुछ थी वे तो मुझी गाड़ी मुझे जो अमाउंट आजे फैमिली मेम्बर्स के शिफ्ट कर छोड़ो
2: ठीक है
3: हाँ डिसीज पर्सन के दौरान वह शे खबर हुई लेटर ऑन तो जैसे उन्होंने इंफॉर्मेशन छा दिनी गाड़ी तो उन्होंने हैंड ओवर कर छी उन्होंने 20 लाख की जगह हिते पंज लख पाण यूज़ करे छॾिया ऐं बकाया 15 लख ॾिननि जेके हुननि 5 लख खया न देट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ
2: ट्रस्ट
3: ईअं कुझु माण्हुनि खे ज़ेवर हूंदा आहिनि अगरि मिसाल लेडीज़ हूंदियूं आहिनि कमु करण वारियूं अगरि औरतूं हूंदियूं आहिनि या हुनजी ख़िदमत वारी हूंदियूं आहिनि सर्वेंट्स हूंदियूं आहिनि या मेड सर्वेंट जेके चइबो आहे अगरि उहो हुननि वटि ज़ेवर
2: आहिनि
3: सपोज़ हुनखे 3 तोला 5 तोला या सपोज़ 10 तोला सोनो आहे त उन्हनि पंहिंजे वली वारे सां खे हाली न ॿुधायो आहे त मूं वटि केतिरो सोनो आहे पर हुनजे मेड सर्वेंट खे ख़बर आहे नाओ शी लेडी इज़ डाइट ठीकु आहे न औरत गुज़ारे वई औरत गुज़ारे वञण खां पोइ त नाओ हुन छा कयो अलमारी खोली अलमारी मां 1 तोलो 2 तोलो जेको बि सोन जेतिरो खणी सघी हुन खयो बाक़ी हुन हैंड ओवर करे छॾियो पंहिंजे वारिसनि खे फ्रॉम देट 10 तोला मां अगरि हुन 2 तोला अगरि मिसयूस कयो देट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
2: ओके अच्छा हिन में हिकिड़ी ॿी मुंहिंजे ज़हन में अची वई ॻाल्हि अक्सर तव्हां ॾिठो आहे असां वटि जो आहिनि एक्सीडेंट्स घणा थियनि पिया ऐं उन में हुनजी जेका आहे जंहिंजो एक्सीडेंट थिए पियो हुनजी कंडीशन सफ़ा डाउन हूंदी आहे जेके हुते माण्हू मौजूदु हूंदा आहिनि त घणा मूं ॾिठा अहिड़ा केसिस त उते हू हुनजा वॉलेट्स मां पैसा बि कढी वठंदा आहिनि या का क़ीमती शइ हूंदी आहिनि उहा खणी वठंदा आहिनि त तव्हां छा हुननि जी चार्ज चार्ज
3: क्रिमिनल ब्रीच में नथा अचनि उहे चवनि था मिसअप्रोप्रिएशन में मिसअप्रोप्रिएशन जो मां कॉन्सेप्ट 1 सेकेंड तव्हांखे क्लियर कयां क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में वॉलंटरी शइ हैंड ओवर थिए थी पई बदनीअ थी बाद में थी पैदा थिए मिसअप्रोप्रिएशन में शइ मिले थी पई या कोई असांखे ॾिए थो पियो पर इंटेंशन बाद में जेकी डिसऑनेस्टी जेकी पैदा थिए थी उहा लेटर ऑन पैदा थिए थी इनिशियल हुनजो को न हूंदो आहे इंटेंशन न हूंदो आहे त मां इहा शइ मिसअप्रोप्रिएट कयां या हिन अमानत में ख़यानत कयां जीअं तव्हां ॿुधायो पिया त अगरि को डिसीज़ कुराड़ो आहे अगरि को गुज़ारे थो वञे या को विल लिखाए थो वञे हाणे विल में हुनखे ॿुधायो थो वञे मुंहिंजी 200 एकड़ ज़मीन आहे मुंहिंजे फैमिली मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कई वञे लेटर ऑन अगरि उहो विल खे एग्ज़ीक्यूट करण वारो उन में सिर्फ़ु हेर फेर करे छॾे त न 200 एकड़ मां 10 एकड़ जेकी ज़मीन आहे उहा मुंहिंजी बि आहे त डेट जेको पॉइंट आहे जिते उहो मिसट्रस्ट क्रिएट थो थिए डेट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हवालो ॾिनो वियो आहे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाए कैरियर एंड वेयर हाउस कीपर्स एक्सेट्रा कीअं पिया ॾिसो हिन खे काई शइ कंहिंखे मतिलबु मिले पई कंहिंखे पहुचाइण जे लाइ उन में विच में हू ख़यानत पियो करे या वेयर हाउस कीपर्स थी विया या बिज़नेसमैन थी विया कंहिंखे अगरि पोयां हैंड ओवर करे वञनि पिया पंहिंजो बिज़नेस ऐं उन में हू ख़यानत करे उन जूं शयूं मिसयूज़ करे उन ते थोरो त मां हिन खे ईअं चवंदुमि जीअं तव्हां कोई बि कोरियर सर्विस खणो चाहे उहो गवर्नमेंट हुजे चाहे उहो प्राइवेट हुजे तव्हां कोई कोरियर सर्विस जे थ्रू तव्हां पंहिंजो क़ीमती सामान मोकिलींदा या ऑनलाइन ज़रिए अगरि तव्हां ऑडर था कयो त उहो ऑनलाइन जे ज़रिए तव्हांजे घर सामान पुॼंदो अचे सपोज़ तव्हां मोबाइल ऑडर कयो आहे ऐं मोबाइल ऑडर करण जे टाइम जॾहिं तव्हां हिते पुॻो त मोबाइल तव्हांखे डॿो त मिलियो पर मोबाइल न मिलियो उहो विच में जेको मोबाइल गुम थी वियो
2: इहो
3: बेसिकली देट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हिकिड़ो फनी मां तव्हांखे ॿुधायां जीअं सपोज उहो हूंदो त न हूंदो त न जीअं असां वटि हाणे फूड सर्विसिस हले थी पई सपोज कोई फूड सर्विस जे दौरान को हिकिड़ो ऑडर थो करे छॾे ऐं ऑडर जे दौरान घर ताईं पुॼंदे पुॼंदे हिकिड़ो ऑडर गुम थो थी वञे ठीकु आहे त उहो जेको ऑडर जो गुम थियणु या ऑडर खे ॿी काई जॻह ते डिलीवर करणु पैसा पूरा वठी छॾनि ऐं जेको हुन विच में जेको मिसअप्रोप्रिएशन थिए थी डेट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
2: हिन ते अक्सर थींदो आहे शेवा साहब त स्पेशली असां काई शइ कॾहिं कॾहिं काई बि शइ खाइण वारी घुराईंदाऊं त जेको
3: पूरो अवेलेबल
2: ईंदो ईंदो आहे रस्ते में
3: सामान अवेलेबल न हूंदो आहे या हुनखे सपोज़ हाणे हिकिड़ी बिरयानी जो पैकेट आहे अगरि 10 चमचा उनाणी छॾिया त असां हुनखां न पुछंदासीं त छा आहे पर ॾिठो वञे त उहो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करे थो कोरियर सर्विस मां सपोज़ कोरियर हाणे असां कोरियर सर्विस जे थ्रू असां पंहिंजा डॉक्यूमेंट्स मोकिलींदा
2: आहियूं
3: कपिड़ा मोकिलींदाऊं फर्नीचर्स मोकिलींदाऊं कोई बि अहिड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलर्स हुजनि असां मोकिले छॾंदाऊं ठीकु आहे अगरि या शूज़ बि मोकिलींदाऊं या असां कपिड़ा अगरि ड्यूरिंग इन दौरान अगरि उहो शख़्स या उहो इंसान या उहो को सर्विस अगरि हुनखे मिसयूज़ करे पंहिंजे पर्पज़ लाइ इस्तेमालु करे छॾे थी फ्रॉम देट पॉइंट ही इज़ अ क्रिएटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
2: ट्रस्ट ऑल दैट ऐं वेयर हाउसेस ते अगरि असां
3: वेयर हाउसेस में ईअं थींदो सपोज़ तव्हांजो हाणे हिन साल मून थो ठहे नाराने कागान वञण जो गर्मी बि अचनि थी पियूं ऐं मोस्ट ऑफ द टाइम हर कोई हले वेंदो आहे तव्हां पंहिंजे पाड़े में पंहिंजे लोकेलिटी में गाॾी बीहारींदव
2: ओके
3: त हे मुंहिंजी गाॾी खे तव्हां संभालियो या पंहिंजी मोटरसाइकिल बीहारे वेंदव गाॾी त तव्हां खणी था वञो या अगरि बाए फैमिली तव्हां वञो त ट्रेन जे थ्रू सफ़र कंदव हाणे तव्हां कंहिं जॻह ते कंहिं गैरेज ते गाॾी बीहारे छॾी चाॿी बि ॾेई छॾी हाणे हुन शख़्स छा कयो हुन गाॾी गाॾीअ खे मुसलसल टैक्सी करे यूज़ करे छॾियो हुन में तव्हां हुनखे एज़ अ वॉलंटरली हैंड ओवर कई प्रॉपर्टी त मां हिकिड़ी प्रॉपर टाइम ते या हिकिड़े पर्टिकुलर टाइम ते मां ईंदुमि तव्हां खां इहा शइ वठंदुमि अगरि हिन में जेको बि तव्हांजो जेको हूंदी महिनत हूंदी आई विल पे टू यू एज़ पर द कॉन्टेक्ट जेको मां तव्हांखे चयोमि एक्सप्रेसली कॉन्टेक्ट हूंदो आहे या इम्प्लाइड कॉन्टेक्ट हूंदो आहे एज़ पर हिन कॉन्टेक्ट जे हिसाब सां पर लेटर ऑन छा कयो जीअं तव्हां नारायण ऐं कागन जे सफ़र ते निकितो फ्रॉम नेक्स्ट डे दैट मीन यूज़ दैट यूर प्रॉपर्टी एज़ अ टैक्सी या हुनखे कंहिं बि कंहिं सर्विस जे थ्रू हुनखे हलाइणु शुरू करे छॾियो हुन मां अमाउंट कमाइणु शुरू करे छॾे तव्हांखे ख़बर ई न उहो जेको यूज़ेज आहे न फॉर पर्सनल गेन ऐं कंहिंजे पर्सनल लॉस जो दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
2: ओके ऐं ईअं अक्सर थींदो आहे तव्हां प्राइवेट मुलाज़िम जेके आहिनि प्राइवेट जेके आहिनि त कंहिं जॉब वग़ैरह कंदा आहिनि ऐं बिज़नेस वग़ैरह हुननि जे जॾहिं हैंड ओवर कनि पिया को सामान
3: स्टोरेज हूंदा आहिनि स्टोरेज हूंदा आहिनि मिसाल मेडिसिन स्टोरेज हूंदा आहिनि फर्नीचर स्टोरेज हूंदा आहिनि मोबाइल स्टोरेज हूंदा आहिनि कंप्यूटर स्टोरेज हाणे कंहिंखे को हज़ार हिकिड़ा सेल फोन हैंड ओवर करे थो हाणे हज़ार मां अगरि हो ॿ फोन बि खणी थो छॾे को मायना त नथा रखनि हज़ारे फोन मां ॿ फोन बि अगरि खणी थो छॾे हलियो थो वञे दैट इज सिंगल पॉइंट इज़ कॉल्ड मिसट्रस्ट हुन मिसट्रस्ट खे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चइबो आहे छो की अमानत में ख़यानत थिए थी पई प्रॉपर्टी वॉलंटरली वञे थी को भरोसो करे ॾिनो थो वञे त यू आर बींग पेड फॉर दैट थिंग ऐं पेमेंट वठण खां पोइ बि जेकॾहिं इंसान हुनखे यूज़ करे पंहिंजे पर्सनल गेन जे लाइ दैट इज़ कम इन द एम्बिट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
2: ओके अच्छा ही ब्रेक ते वञण खां पहिरियां पाण खे सवाल आयो सो उन्हनि सवाल खे एफ आई आर कीअं कराइजे अगरि एक्ट इन केस ई थी वञो उन जे सवाल खां पहिरियां हिकिड़ो सवाल अगरि इहो थिए पियो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थिए पियो त कीअं आइडेंटिफाई कजे त हीउ सिविल नेचर आहे या हीउ क्रिमिनल नेचर आहे सिविल कोर्ट में कहिड़ा केसिस वञी या एफ आई आर जे लाइ जेके
3: आहिनि चयुमि सिविल मैटर्स में ऐं क्रिमिनल मैटर में टे शयूं तव्हांखे अमूमन मेन इनग्रीडियंट्स आहिनि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जा हिकु त प्रॉपर्टी इज बींग वॉलंटरली ट्रांसफर्ड वॉलंटरली असां इंट्रस्टेड कई आहे टू समवन ॿी इहो ई आहे त एज़ पर कॉन्टेक्ट दैट इज़ कंडक्टेड बिटवीन द टू पार्टीज़ एक्सप्रेसली ऐं एम्प्लाइडली की हे तव्हां प्रॉपर्टी रखो ऑन द सर्टन डेट ऑन सर्टन टाइम ऑन द रीज़नेबल पंहिंजो जेको आहे न मौके ते अची करे ओकेजन ते अची करे आई विल टेक दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम यू तव्हां खां मां इहा प्रॉपर्टी वापसि वठंदुमि अगरि हुन में अगरि को मिसाल तव्हां हुनजे मथां को ख़र्चु कयो हूंदो या हुनजी लुक आफ्टर कई हूंदी आई विल पे यू ठीकु आहे पर उहो छा थो करे उन कॉन्ट्रेक्ट खे ब्रीच थो करे टी पॉइंट इहो आहे त दैट पर्सन इज़ डिस्पोसिंग ऑफ डिस्पोसिंग मतिलबु हुनखे इस्तेमालु थो करे या दैट पर्सन इज़ रिमूविंग या हुनखे डिस्ट्रॉय थो करे छॾे सो उन छा थो करे त वॉलन हुन शइ खे उन पूरे जे पूरे कॉन्ट्रेक्ट खे उन एज़ पर लॉ हुनजी वायोलेशन करे थो त इहे टे इनग्रीडियंट्स लाज़मी आहिनि जेको क्रिएट कंदा कि इहो सिविल नेचर खां हटियलु आहे छोकी प्रॉपर्टी में शुरू में बदनीयती न हूंदी आहे लेटर ऑन बदनीयती क्रिएट थी वेंदी आहे त हुनखे यूज़ थो करे हाणे सिविल में छा आहे सपोज़ कंहिंखे खां पैसा वरिता ऐं पेमेंट त ॾींदो थो अचे पर ड्यू टू सम लॉस हाणे उहो पेमेंट नथो करे सघे उन में बदनीयती न आहे हो कुझु मसलनि जे करे हालातनि जे करे उहो तव्हांखे कुझु पेमेंट्स न ॾेई सघियो आहे हिते छा आहे हिते इंसान हुन प्रॉपर्टी खे मिसयूज़ थो करे छॾे ठीकु आहे इहो डिफरेंस आहे क्रिमिनल
2: शहबाज़ साहब हीअं अक्सर थींदो आहे तव्हां ॾिठा हूंदा पंहिंजी हिन प्रैक्टिस में त पैसा ॾींदे ई ॾींदे हमरा कंहिं बि ॻाल्हि ते तल कलामी थी वेंदी आहे चवंदो आहे न ॾींदोमांइ पैसा जेको करिणो अथई वञी कर उहो बि सिविल जी तरफ़ ईंदो या
3: सिविल थींदो उहो स्पेसिफिक में वेंदो तव्हांजो कॉन्टेक्ट आहे न ब्रीच ऑफ कॉन्टेक्ट तां हलिया वेंदो होॾे सिविल जी तरफ़ हलिया वेंदो तव्हां हिते छा आहे हिते अगरि मां तव्हांखे कुझु एक्स्ट्रा पॉइंट ॿुधायां जीअं असां बेलमेंट हूंदी आहे न प्लीज हूंदी आहे बेलमेंट हूंदी आहे मॉर्गेज हूंदी आहे हाणे प्लीज ऐं बेलमेंट जी तरफ़ अगरि मां ईंदुमि कॉन्सेप्ट्स आहिनि इहे की बेसिकली कॉन्ट्रेक्ट एक्ट जा त बेलमेंट में छा थींदो आहे त इंसान वॉलंटरली जेको आहे न प्रॉपर्टी खे ट्रांसफर थो करे विदाउट जेको आहे न गिविंग पोज़ेशन पोज़ेशन न ॾींदो सॉरी पोज़ेशन ॾींदो एंटाइटलमेंट न ॾींदो मालिकी न ॾींदो मालिकी माण्हू वटि ई रहंदी पोज़ेशन ॾेई छॾंदो हाणे उहो चवंदो त मां तव्हां को सर्टन टाइम ते अची करे इहा शइ वापसि वठंदो हुनजो लुक आफ्टर कंदो इन जो हिकिड़ो सवलो मिसाल ॾियां तव्हां कंहिं माण्हू खे चओ त साईं हे मुंहिंजो 5 किलो जो जेको चांवरनि जो बोरो आहे तव्हां रखो हिते ऐं इहो फाइन बहितरीन क़िस्म जो इहे चांवर आहे ऐं हाणे तव्हां रखाए हलिया वियो साईं मां तव्हांखे सुभाणे इहो खणी वेंदुमि हाणे माण्हुनि छा कयो त ॾिठो हे चांवर तमामु सुठो उन मां 1 किलो चांवर खणी करे विकिणे छॾी ऐं पंहिंजो लो क्वालिटी जेको चांवर आहे मिलाए छॾी उन उनकी मिसयूज़ आहे न जेको जेको हुन चांवरनि खे मिसयूज़ करे छॾियो हुन चांवरनि खे पंहिंजे पर्पज़ लाइ तो गेन कई विकतई हुन मां हुनखे पैसा मिलिया वरी पंहिंजो लो क्वालिटी जो चांवर तव्हां सां मिलाए छॾे और जेको मिलाइण जेको जेको प्रो जेको फेज़ आहे न उन फेज़ खे असां चवंदा आहियूं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
2: ऑल राइट अक्सर त को ईअं अगरि ॿुधायां वञे चांवर सुठी क्वालिटी वारा हमरा त पचाइणु शुरू थी वेंदो पर
3: थींदो आहे कॾहिं कॾहिं थींदो आहे या त ॾिसो न या त रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे न मुंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे टू लुक आफ्टर हिम असल मां तव्हांखे छा चयूं बेल बेलमेंट जेके चवंदा अमानत तौर रखंदा आहिनि प्लीज बि असां छा चवंदा अमानत तौर रखंदा ई न प्लीज में छा थींदो आहे त सिर्फ़ु सिर्फ़ु असां को लोन वठंदा आहियूं कंहिं पर्पज़ जे लाइ त जॾहिं मां लोन तव्हांखे वापसि करे छॾंदुमि तव्हां इहा प्रॉपर्टी काइंडली मूंखे हैंड ओवर कंदो इन इनखे चइबो आहे अमानत में शुरू में बदमी थी मां वन सेकेंड रिपीट थो कयां आई एम रिपीटिंग दैट पॉइंट फॉर द दोस पर्सन जेके असांखे विच में बि अगरि असांखे कंहिं जॉइन कयो आहे त हुनखे इहा ख़बर पइजी वेंदी वाट काइंड ऑफ टॉपिक इज़ बींग डिस्कस बिटवीन द बाबर एंड सरशेबाज़
2: हाणे तैयब जो सवाल ते अचूं पिया
3: हाणे मां तैयब जिन सवाल ते ईंदुमि इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी मिसल सपोर चार सौ टे जे अगरि तव्हां डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी में वेंदो हुनजी पनिशमेंट ॿ साल आहे ईअं अगरि तव्हां चार सौ हुन में चार सौ टे में ईंदो हुनजी पनिशमेंट टे साल आहे ईअं न अगरि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हुनजी बि टे साल
2: आहे
3: इंटेंसिटी एंड इन द कंडीशन दैट क्राइम इज़ बींग डन
2: त
3: डिपेंड करे थो लाजमी ॿिनि सालनि खां वठी करे वेंदे ॾह साल ऐं प्लस लाइफ इम्प्रिज़नमेंट ताईं बि हिन जी सज़ा आहे पर अमूमन छा आहे ॾह साल इहो मैजिस्ट्रेट ट्रायल बि आहे इहो सेशन ट्रायल बि आहे
2: ठीकु आहे अच्छा हिकु ॿ ॿिया बि असां वटि वॉइस नोट्स आहिनि जेके मां इंक्लूड कयां पियो
5: जी जी अस्सलाम वालेकुम सर माय नेम इज़ ज़ुबैर अहमद मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो इस मुतलक मेरा एक सवाल है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग में क्या फ़र्क होता है आम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं इसका जवाब दें प्लीज
3: वेरी गुड क्वेश्चन
2: सुठो सवाल अच्छा सवाल किया है ज़ुबैर आपने जी
3: थैंक यू वेरी मच ज़ुबैर इट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन इज बींग आस्क्ड बाय यू चीटिंग Cheating is a kind of deception. It's a kind of concealment of fact, concealment of the facts for anything. Agar ye samjho ta thagi karan jeke dhoko de kaim ke manu ke yakin diyan dis mana etro induce kare chadan te jeki ya she a ya waqai munji a
2: sahi
3: mukha tu khareed kar jade tu ashe unji nahi mistress jo mata hi budha deception cheating misappropriation jo yu a ta sirf hai sirf again coming to the same point ke badniyati from the beginning cheating mein jeki dishonesty hai wo shuru hai
2: okay
3: he has intention to deceive that person mana baad mein create na thyo jeko mensri hai jeko exri hai jeko mensri hai intention jeke sa chauno jeko mensri hai starting mein created
2: hai yes yes
3: theek hai na later on manu chato kare ta exri hai tumsa gad hai par jeko misappropriation mein jeki the thi wo mensri hai tahan jeke sa chan badniyati wo shuru उहो लेटर ऑन क्रिएट थी थिए मूंखे अगरि हिकिड़ो मोबाइल थो मिले रोड ते मां खणी छॾियो माना आई हैवंट फाउंड द रियल ओनर मूंखे न आहे ख़बर पर मां हुनजी पब्लिकेशन बि करायां थो मां पाड़े में अनाउंसमेंट बि करायां थो मां लोकेलिटी में न्यूज़ बि फैलाए थो छॾां अगरि मुंहिंजो सर्किल आहे मां हुते व्हाट्सअप ते मैसेज बि हलायां थो मां फेसबुक ते हिकिड़ी वीडियो बि चाढ़े थो छॾां त हे मोबाइल कंहिंजो आहे अगरि जेको बि रियल ओनर हुजे अचे मूंखां वठे
2: वठी वञे
3: ठीकु आहे हाणे मुंहिंजी लुक आफ्टर कंदुमि केयर कंदुमि पर मोबाइल मूंखे मिलियो मूंखे ख़बर आहे मोबाइल बाबर जो आहे पर स्टिल आई एम नॉट गिविंग that thing to the barber na thodi ama I know where is the barber live what is the location of the barber in where place in which place the barber is working
2: sahi
3: unki service karte hai but still that thing I'm using for my own purpose that thing is called misappropriation intention baad mein create hote
2: sahi hua
3: cheating mein cheating mein shuru mein ta jo intention hi dhoko dena
2: all right all right
3: theek hai na that's a difference between cheating and misappropriation
2: ek ro bio sawal bhi asan wat aaya hai program mein shamil kyun pya
6: assalam alaikum माय नेम इज़ अफ़ज़ल निसार जीअं त तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहियूं असांजो हिकिड़ो नंढो सुवालु हुयो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जे हिसाब सां अगरि कोई बि माण्हू जेको आहे सो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करे थो पियो त ज़ाहिर आहे कानून जे मुताबिक़ हुनखे का सज़ा बि ॾिनी वेंदी थोरे बारे में असांखे गाइड कजो त जेको आहे सो उनजी केतिरी सज़ा आहे ऐं असां हुन खे कहिड़े तरीक़े सां सजा ॾियाराए सघूं था
3: बहुत कुझु चयो आहे तयब बि साॻियो कुझु
7: वेलकम
8: सर आई एम मोहम्मद मेदीशा तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहियासीं जीअं त तव्हांजो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जे हिसाब सां टॉपिक हले पियो हुनमें हिकिड़ो मुंहिंजो सवाल हुयो त पाकिस्तान पेनल कोड में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जी सज़ा छा आहे इहो ॿुधाइजो थोरो
3: सज़ा हिन जे करे पुछनि था पिया त असांजी इहा सोसाइटी में आम जाम शी आहे नॉर्मल शी आहे माना एज़ यूजुअल बेसिस ते थिए थी पई सो कोशिशि इहो करनि था त अगरि कोई हुननि सां धोखेबाज़ी करे थो या हुनजी अमानत में कंदा हुनखे सज़ा कीअं ॾियारी सो बहितर इहो आहे त सज़ा ॾियण खां बहितर
7: आहे
3: ॾिसो न असां लफ़्ज़ लिखंदा आहियूं स्टेट वर्सिस डेड पर्सन या ए बी सी पर्सन अगरि कोई माण्हू क्राइम थो करे न त उहो इंडिविजुअल सां क्राइम नथो करे पूरी सोसाइटी सां क्राइम थो करे त देट इज़ द रीज़न जॾहिं बि असां क्रिमिनल केसिस में लिखंदा आहियूं स्टेट वर्सिस ए बी सी माना हिन शख़्स हिकु इंसान सां क्राइम न कयो आहे पूरी रियासत सां क्राइम कयो आहे छोकी रियासत इज़ अ मदर छोकी स्टेट हूंदी आहे मदर हूंदी
7: आहे
3: जो रोल मदर वारो हूंदो आहे की टू प्रोटेक्ट टू फीड एंड टू गिव शेल्टर टू इट्स इंडिजन जेके जेके माण्हू आहिनि जेकी हुनजी पब्लिक आहे जेकी आवाम आहे उन्हनि खे जेको आहे न इहे टई शयूं मुहैया कनि स्टेट जो कमु
7: आहे
3: सो इहे इंडिविजुअल सां क्राइम न हूंदो आहे पूरी स्टेट
7: सां क्राइम हूंदो आहे सो हिकु कॉलर शामिल था करे वठूं
9: तक़रीबन अध खां सवाइ अमल थी चुको आहे वरी बि अर्ज़ु कंदासीं
7: जी
9: हा त हीउ जेको तव्हांखे मां चयो अॻे हफ़्ते त माना ड्रग्स ऐं आइस भंग वग़ैरह एम्पायर नाके रोड रोड ते हले थी त हिन ते गवर्नमेंट सिंध पुलिस असांजी ॾाढो हिते मां ॾिसां थो कमकार एॾी तेज़ी सां थी करे मवाली या मंशात वारा दर पदर करे छॾिया अथऊं ॾाढो बहितर था कनि
7: तव्हां ईअं ई पॉइंट आउट कराईंदा रहंदा कयो इनशाला ताला कारवाई थींदी मंशात फरोश जेके बि आहिनि इन्हनि खे बसि सज़ा मिलंदी ठीकु आहे
9: सरकार मां त माना पकड़ायान बि पर हिते छो अहिड़ो या एस पी बि मां सां हुजनि मां क्राइम वारा अहिड़ा माण्हू पकड़ाया आहिनि जेके सॼी ज़िंदगी गवर्नमेंट न पकड़े सघी आहे इलाही माण्हू मूं वटि आहिनि जेके मां ॾिसां थो उन्हनि जा अखाणा ॾिसां थो बाक़ी जे माना को तंग न करे त मां गवर्नमेंट सां वॾी हेल्प कयां
3: तव्हांखे खिलाई मकलू हर टाइम सुपरमैन त न
7: ईंदो
3: जेके असां इमेजिनरी हिकिड़ी दुनिया ठाही आहे आयरन मैन सुपरमैन मार्वल
7: सीरीज़
3: असां जेके माण्हू हूं जेके अगरि पंहिंजी सोसाइटी में अगरि काई बि शइ खे पॉइंट आउट कयूं था कयूं था पिया अगरि काई बि अहिड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी खे रेस्ट कयूं था बेसिकली वी आर डूइंग द वर्क ऑफ सुपर हीरो चाहे उहो नंढे बेसिस ते कयूं चाहे वॾे बेसिस ते कयूं
7: सो ही सुपर हीरो
3: तमामु बहितर आहे डू अप्रिशिएट हिम के हुननि इहो जेको आहे न कमु करे
7: अक्सर प्रोग्राम में असांखे पॉइंट आउट करायो
3: शाउट आउट शाउट आउट ॾियणु खपे हिननि खे वेरी ब्रेवो टू ब्रावो जे लाइ असां कमु कंदा आहियूं तमामु जीअं हाणे अधे वारनि हिकिड़ो ज़िक्र कयो त पुलिस वारनि हुते वॾो बहितरीन रोल प्ले कयो
7: आहे
3: मां आई हेड्स ऑफ देम माना मां सल्यूट पेश कंदुमि सलाम पेश कंदुमि हिननि पुलिस वारनि खे जेके इन एक्टिविटीज़ खे रोकनि था ऐं पंहिंजी जाननि जी क़ुर्बानी बि ॾियनि था ऐं पंहिंजी जाननि खे जेको आहे न रिस्क ते रखी करे ऐं इन्हनि एक्टिविटीज़ खे जेको आहे न बंदि कराइनि था सो मां जीअं अॻोणे चयुमि त सुपर हीरोज़ मथो न ईंदा
7: आहिनि सुपर हीरोज़
3: असांजे अंदरि ई
7: हूंदा
3: अगरि इहे पुलिस वारा अगरि पंहिंजी डे नाइट पंहिंजी पब्लिक जे करे अगरि पंहिंजी लाइफ खे रिस्क ते खणी हलनि था फॉर मी दे आर आयरन मैन फॉर मी दे आर सुपरमैन फॉर मी दे आर द बैटमैन सो मार्वल ऐं डी सी खे ॾिसणु न खपे असांजे अंदरि ई सुपर हीरोज़ अवेलेबल आहिनि वॾी तमामु इहा अप्रिशिएबल ॻाल्हि आहे मां अप्रिशिएट कंदुमि हुन पुलिस वारनि खे जेके हिननि जॻहियुनि ते वञी करे ऐं असांखे प्रोटेक्ट करनि था ऐं जेको आहे न इनवाय पूरे जो पूरे जेको आहे न सोसाइटी खे क्लीन रखनि था पिया इन्हनि आसिर्स खां
7: बिल्कुलु शहबाज़ साहब प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो आहे इलाही शयूं पंहिंजियूं रहिजी वयूं आहिनि अञा. लास्ट में कीअं अव्हां असांजे जेका व्यूवर्स खे पैगाम ॾींदा त जीअं उहे जेका इहा आहे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आहे ऐं मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आहे इन खां बची सघनि.
3: मां हिकिड़ो इहो ई चवंदुमि त दे डू डिस्टिंग्विश बिटवीन.
7: ओके,
3: अगरि तव्हां खां प्रॉपर्टी ॾियो था पिया त कोशिशि कयो त हुनजे हुनजा आई विटनेस ज़रूरु हुजनि.
7: ऑल राइट,
3: ठीकु आहे. ऐं आख़िर में इहो चवंदुमि त अगरि सपोज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थियो आहे त पहिरियों ई तव्हां पंहिंजे कंसर्न एस एच ओ खे पुलिस खे पंहिंजी इंफॉर्मेशन ॾियो, एस पी कंप्लेंट सेल ते ॾियो, उन्हनि जे ख़िलाफ़ तव्हां अगरि तव्हां वटि रसीदूं आहिनि, अगरि तव्हां वटि एविडेंस आहे, तव्हां वटि वीडियो आहे, तव्हां वटि मैसेजिस आहिनि, तव्हां वटि वाट्सअप कॉल्स आहिनि, अगरि तव्हां को घुरे त तव्हां पहिरियों त तव्हां एंटाइटलमेंट ॾेखारियो, मालिकी ॾेखारियो इहा शइ तव्हांजी आहे, उन खां पोइ तव्हां हिननि जे लाइ ईज़ीली एफ आई आर दाख़िल करे सघो था पिया. त मुंहिंजो मैसेज इहो ई हूंदो त अगरि कोई बि कंहिं बि शइ माण्हू खे तव्हां अमानत ॾियो त कोशिशि कयो त तव्हां हुनखे जेको आहे न हैंड ओवर करण जे टाइम हैंड ओवर करण जे टाइम कैटेगोरिकली ॿुधायो त मां तव्हांखे अमानत तौर थो ॾियां.
7: अच्छा, हिन ते मूं ॾिठो आहे मुंहिंजे साम्हूं सोसाइटी में अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन खे अगरि अमाउंट मनी वग़ैरह असां हुननि खे अमानत लाइ रखियूं पिया न त हू चवंदा आहिनि हीअ ॿियो आहे असां हिन अमाउंट खे यूज़ कंदासीं पोइ आहिस्ते आहिस्ते किस्तनि में मोटाए ॾींदासीं हुननि खे. त इहो त असां चऊं न त हू बाक़ाइदा तौर ते ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कनि पिया, अमानत में ख़यानत करे रहिया आहिनि ऐं स्पेशली जेको ट्रस्ट करे तव्हां वटि कुझु रखाए पियो. जी
3: ॾिसो न, तव्हां पाण ई लफ़्ज़ ॿुधायो, सवाल जो जवाब बि पाण ॾिनो त अमानत तौर रखा,
7: अमानत तौर.
3: हाणे अगरि हुन मां हिन रुपियो बि अगरि ज़ाया करे छॾियो, रुपियो बि अगरि पंहिंजे मथां इस्तेमालु करे छॾियो त उहो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ई वञे.
7: सुठो
3: लॻो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी रिटर्न सेम प्लेस.
7: सो अगले प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त, अलाह हाफ़िज़.
3: थैंक यू वेरी मच.
10: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
11: उसी खिबसे की बनी है आवाज.
10: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
11: सिंध की आवाज.
12: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे बारे जे बेहतरीन करियर ऐं रोशन मुस्तक़बिल जे लाइ सखर जो मशहूर ऐं मनियल इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारां नर्सिंग ऐं फिज़ियोथेरेपी जे शोबनि में नए सेशन लाइ दाख़िलाउनि जो शानदार ऐलान. हाणे पंहिंजे ॿारनि खे बणायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल. 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स जी बी एस एन, जी बी एस एम ऐं 5 साल डी पी डी, जॾहिं त 2 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम एल एच CMW, ICNA, ऐं ख़ासि ॻाल्हि मुस्तहक़ शागिर्दनि लाइ स्कॉलरशिप्स पिण मौजूद आहिनि, जॾहिं हिते 2 सालनि जे कोर्सेज में दाख़िलो बिल्कुलु फ्री आहे. सहूलियतूं ऐं मान्यता असां वटि मौजूद आहे. स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस, AC क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल ऐं पिक एंड ड्रॉप जी सहूलियत. हीउ इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर थियल ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां मुकमल तस्लीम थियल आहे. दाख़िला महदूद आहिनि, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो. एड्रेस: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर. फोन नंबर्स: 07156356420 ऐं 03008311207. छा तव्हां बि पंहिंजो ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी?
13: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में,
12: सखर शिकारपुर रोड ते,
13: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं,
12: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
13: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो.
12: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
13: रिहाइशी प्लॉट 80, 120, 150 ऐं 200 गज जा,
12: ऐं कारोबारी मौक़े like commercial plots 50 gaz and 600 gaz.
14: aap sun rahe hain,
15: aap sun rahe hain
14: DAFM 88 network, sindh ki awaaz.

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

President Donald Trump जो नायब सदर जे डी वेन्स ऐं परडे॒ही वज़ीर मार्को रूबियो खे ईरान सां सिफ़ारती राब्ता ऐं ॻाल्हियूं जारी रखण जी हिदायत. पाण ते हमले जी सूरत में ईरान खे धरती सां मिसारण जी धमकी बि ॾिनी. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमरीकी फ़ौज खे मुख्य क़तल करण जी सूरत में ईरान खे धरतीअ तां मिसारण जो चई छॾियो आहे. फ़ौज ईरान ते 1000 मिसाइल फायर करण लाइ तयारु आहे. तेहरान खे साज़िश तां पोइ ते हटणो पवंदो.

रहबर जी मौत जो प्लान वठण कौम जो मुतालबो है पूरा थियण घुर्जे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई चयो है त शहीद अगवाणन ए शहरियन जो प्लान वठण जो अहद कयूं था। परडेही वजीर अब्बास अराग़ची चयो है त अमरीका सां मुआहिदो गडियल बुनियादन ते थी सघे थो। अब्बास अराग़ची मौजूदा सूरतहाल ते ॻाल्हियुनि लाइ अमान पहुतल।

92 बाद बाद अमरीका जहाज बरदार ॿ बेड़ा ईरान वेझो मुक़रर करे छॾिया। यूएसएस इब्राहिम ऐं यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू एच बुश खे ईरान वेझो मुक़रर कयो वियो। सेंट काम मूजिबि अमरीका जा 20 खां वधीक जंगी बेड़ा वच ओभर जे समुंड में गश्त करे रहिया आहिनि। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरानी फ़ौज जी दुश्मन जी चुर पुर ते नज़र आहे। फ़ौज मुल्की सलामती ऐं अवाम जे तहफ़ुज़ खे यकीनी बणाए रही आहे। ईरानी क़ौम खे पंहिंजी फ़ौज ते फ़ख़्रु आहे। ईरान अमरीकी हमलनि में 17 शहरियुनि जे शहीद थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरान जे सिहत वारे वज़ारत मूजिबि अमरीकी हमलनि में शहीद थींदड़नि में हिकु औरत बि शामिल आहे। 8 जुलाई ते अमरीकी हमलनि में 115 शहरी ज़ख़्मी बि थिया आहिनि। अमरीका बंदर अब्बास समेत ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते हमला कया हुआ।

0: कराची में सीसी जे मातहत वलीका अस्पताल में एचआईवी पखेड़ जो गढ़ बणजी वही वधीक बबाड़ू एचआईवी में मुबतला जा कॉलोनी वासी नव वरियन की निगरी के एचआईवी की तस्दीक संदस सबब कणियों अगे एचआईवी में वरतल मेट्रोविल वारे इलाके के टिन वरियन की निगरी के भी एचआईवी होने की तस्दीक थी।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर.
1: It's 6:15 p.m.
2: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, जो मसल के फेंक भी दूंगा ना तो कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

शहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

उसके बेटा पेश मोहसिन नकवी जो आए थे मुल्क में लिखियल समूरन दहशतगर्दन के खत्म कर वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी नायब सदर जे डी वेंस पड़ेही वजीर मार्को रुबियो के ईरान से सिफारती रबता गाल जारी रखने की हिदायत पान से हमले की सूरत में ईरान के धरती त मिसारण की धमकी भी दिनी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिकी फौज के मुख्य कत्ल करण की सूरत में ईरान के धरती त मिसारण जो चई छो है फौज ईरान से 1000 मिसाइल फायर कर तैयार है तेहरान के साजिश तौते हटनो पवो शहीद रेबर की मौत जो प्लान वठण कौम जो मुतालबो है पूरा थियण घुर्ज ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तफा खामनाई है शहीद अगवान शहरियन जो प्लान वठण जो अहद क्यों था परदेही वजीर अब्बास राख्ची है अमरीका से मायदो गडियल बुनियादन से थी सके तो अब्बास राख्ची मौजूदा सूरत हाल से गालियन लाए उमान पहुंतल

0: 91 वाद बाद अमरीका जहाज बरदार बेड़ा ईरान वेझो मुकरर करे छॾिया। यूएसएस इब्राहिम ऐं यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू एच बुश खे ईरान वेझो मुकरर कयो वियो। सेंटकॉम मूजिबि अमरीका जा 20 खां वधीक जंगी बेड़ा विच ओपर जे समुंड में गश्त करे रहिया आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जीए एफएम 88 नेटवर्क। जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की। बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: It's 8 PM. This time check is brought to you by
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

सिंध में एच आई वी केसिस में खतरनाक हद ताईं वाधि। रतो देरो ऐं कंबट खां पोइ कराची में सीसी जी मातहत वलीका अस्पताल एच आई वी पखेड़ जो गढ़ बणजी वई। वधीक ॿ ॿारियूं एच आई वी में मुबतला। जा कॉलोनी वासी नव वरियन जी निगरी खे एच आई वी जी तस्दीक। संदसि ॿ भेणियूं अॻई एच आई वी में वरितल। मेट्रोविल वारे इलाइक़े में टिन वरियन जी निगरी खे बि एच आई वी हुअण जी तस्दीक थी। वालदेन जो चवण आहे त धीउ जो इलाज वलीका अस्पताल में थियो। तबियत ख़राब थियण ते टेस्ट कराई त एच आई वी पॉज़िटिव आई। वलीका अस्पताल जे 80 ॿारनि में एच आई वी जी तस्दीक थी वई। चार मासूम ॿारा एच आई वी सां झेड़ींदे ज़िंदगियूं विञाए चुका। बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन शपान में अॼु वधीक 21 दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन दौरान मजमूई तौर मारिजी वियल ख़ारजी दहशतगर्दनि जो अघु वधी 64 थी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मौजूद पाक फ़ौज एफ सी ऐं पुलिस जो ख़ारजियुनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी आहे। ताज़नि कार्रवाईनि में अॼु वधीक 21 ख़ारजियुनि खे जनम भीड़ो कयो वियो। जबलनि में लिकियल दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ज़मीनी ऐं फज़ाई कार्रवायूं कयूं पयूं वञनि। 5 जुलाई खां जारी ऑपरेशन शबान ऐं ॿियनि कार्रवाईनि में 102 दहशतगर्द मारिजी चुका। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी पारां कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सिस खे भेटा पेश। मोहसिन नकवी चयो त मुल्क में लिकियल समूरनि दहशतगर्दनि खे ख़तमु कयो वेंदो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
0: पहचो शहर पहचो घर सकरण आए सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8।
2: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: ऑपरेशन शोबान बया जो एक्वी दहशतगर्द मारजी वह ऑपरेशन दौरान मजमू तौर मारजी वल खारजी दहशतगर्द जो अंग चौहट थी वो सिक्योरिटी जरिए मौजूद पाक फौज एफ सी ए पुलिस जो खारजियन खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ताजियन कार्रवाई में अज एक्वी खारजियन के जन्म भीड़ो किया वो जबलन में लिखल दहशतगर्द खिलाफ जमीनी ए फिजाई कार्रवाई क्यों पी वन 5 जुलाई का जारी ऑपरेशन शोबान एन कार्रवाई में 102 दहशतगर्द मारजी चुका। घरू वजीर मोहसिन नकवी पारा कामयाब ऑपरेशन से फोर्सिस के भेटा पेश। मोहसिन नकवी तो मुल्क में लिखल समूर दहशतगर्द के खत्म किया वो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नायब सदर जे डी वेंस ए परडेही वजीर मार्को रूबियो के ईरान से सिफारती राबता ए गाल जारी रखने की हिदायत। पान ते हमले की सूरत में ईरान के धरती तां मिसारण की धमकी भी डिनी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है अमरीकी फौज के मुख्य कतल करण की सूरत में ईरान के धरती तां मिसारण जो चई छो है। फौज ईरान से 1000 मील मिजाइल फायर करण लाय तैयार है। तेहरान के साजिश तां पोए ते हटणो पवंदो। शहीद रेबर की मौत जो प्लान वटन कौम जो मुतालबो है पूरा।
1: मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ शैम्पू प्लस हेयर सीरम का ट्यूल एक्शन। न्यू सेट एंड टच केराटिन शैम्पू बालों के डैमेज सेल्स को रीजनरेट करे। सेट एंड टच केराटिन शैम्पू
0: थी सके तो अब्बास राक्षी मौजूदा सूरत हालते गाले लाए उमान बोतल। चिकतान में वाद बाद अमरीका जहाज पड़ताल बेड़ा ईरान वेझो मुकर्र कर यूएसएस इब्राहिम यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू एच बुश के ईरान वेझो मुकर्र किया। सेंटकॉम मूजिब अमरीका जहा 20 का जंगी बेड़ा विचो भर की समुंड में गश्त कर रहा है। ईरानी परडेही वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकई है ईरानी फौज के दुश्मन की चुरपुर से नजर है। फौज मुल्की सलामती अवाम के तहफुज के यकीनी बनाए रही है। ईरानी कौम के फौज से फख्र है। Thank you.

अमेरिका मुआदो टोड़ियो तो ईरान दिफा लाइ तैयार है। ईरान कदें भी जंग ना चाही पर जुल्म आड़ो न झुकंदो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ चाहिए तो गालियन दौरान अमरीकी नायब सदर के बुधाय हो तो अमरीका से एतबाद ना है। तकरार ईरान के हथियार फिटा करण से कदें भी खत्म न थो। दुनिया जहा मुख्तलिफ मुल्क जंग के खात्मे के तरजीह दींदा अमरीका से सलाहतियों गाल करे तो जो जंग लाए भी तैयार हुए। ईरान अमरीकी हमलन में 17 शहरियों के शहीद थियण की तस्दीक कर छी। ईरान की सेहत वाली वजारत मूजिब अमरीकी हमलन में शहीद थींदड़न में एक औरत भी शामिल है। 8 जुलाई से अमरीकी हमलन में 115 शहरी जख्मी भी थे। अमरीका बंदर अब्बास समेत ईरान के मुख्तलिफ शहर से हमला किया हुआ।

कराची बार एसोसिएशन के चूंडन में आमिर नवाज वड़ाइच मैदान मारे वरतो। आमिर नवाज वड़ाइच 2063 वोट खड़ी सदर चूंची वो। जीएम कोराई 648 वोट खड़ी सको। अजीज गोरी 893 वोट खड़ी नायब सदर चूंची वो। अरशद शेर 1370 वोट खड़ी कराची बार एसोसिएशन जो सेक्रेटरी थी वो।

सिंध में एच आई वी केसिस में खतरनाक हद ताईं वाधा थो देरो ऐं गंबट खां पोइ कराची में सी सी जे मातहत वलीका अस्पताल एच आई वी पखेड़ जो गढ़ बणिजी वई। वधीक ॿाड़ियूं एच आई वी में मुबतला जा कॉलोनी वासी नव वरियनि जी निगरी खे एच आई वी जी तस्दीक संदसि ॿ मासूम भाइर अॻई एच आई वी में वरितल। मेट्रो विलेर वारे इलाइक़े जे टिन वरियनि जी निगरी खे बि एच आई वी हुअण जी तस्दीक थी। वालदनि जो चवणु आहे त धीउ जो इलाज वलीका अस्पताल में थियो। तबियत ख़राब थियण ते टेस्ट कराई त एच आई वी पॉज़िटिव आई। वलीका अस्पताल जे 80 ॿारनि में एच आई वी जी तस्दीक थी वई। 4 मासूम ॿारा एच आई वी सां जहिड़ींदे ज़िंदगियूं विञाए चुका। बख्शापुर भरसां बीएस फीडर के आरडी 140 वटां लगल गारे सवे घर बोड़े छड़िया। हजार एकड़न ते बीठल फसल भी पानी हेठ। गोठ लिकाओ बंगवार वटां गारो पवण सबब केतरा ही गोठ ऐं हजारे एकड़न ते बीठल सारियालो फसल बुडी वियो। 200 फुट ताईं वधी वियल गारो केतरा ही कलाक गुज़रण बावजूद वधजी न सघियो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में ज़रई पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। टंडो ग़ुलाम हैदर में वाह में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो बदीन रोड ते धरणो। मुबारकपुर जी मूसा अलाहाबाद शाख में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो मुज़ाहिरो। निंदू में कटण सब डिवीजन जी वाहिनि में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। पाणी फराहम करण जो मुतालबो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में कणक ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं। केतिरा ई गोदाम सील। कणक जूं हज़ारे बोरियूं हथ। बान सईदाबाद में मुख़्तलिफ़ गोदामनि ते छापा। गैर क़ानूनी तौरु ज़खीरो कयल कणक जूं 5,000 बोरियूं हथ। 3 गोदाम सील। खोड़ा में बि कार्रवायूं करे 10 गोदाम सील कया विया। मदेजी में बि कणक जे गोदामनि ते छापा। केतिरा ई गोदाम ऐं दुकान सील। कणक जूं ज़खीरो कयल हज़ारे बोरियूं हथ। शहदादकोट पनवा किल ऐं सिटाजा में बि गोदामनि में पयल कणक जूं हज़ारे बोरियूं ज़ब्त। साढ़ 8 अरब रुपयनि जी करप्शन केस में गिरफ़्तार ज़मीर अब्बासी जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त सिंध हुकूमत पारां एतिराज़ न करण बावजूदु रद्द। ॿुधणी दौरान सिंध हुकूमत पारां स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश थी चयो त ज़मीर अब्बासी जी ज़मानत थियण ते सिंध हुकूमत खे को एतिराज़ नाहे। जवाबदार जे वकील चयो त एडवांस तौर सामान ख़रीद करे सघिजे थो। शर्त ताईं ज़ाब्ता बि पूरा कया विया हुआ। साब्ती जी ज़िमेवारी प्रोसिक्यूशन आहे। अदालत सिंध हुकूमत पारां एतिराज़ न करण बावजूदु ज़मीर अब्बासी जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। बीआरटी येलो लाइन जे अॻूणे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी खे एंटी करप्शन लाहौर मां गिरफ़्तार कयो हो। थरी मीरवा भरिसां पसंदि पणे जी ख़्वाहिश ज़ाहिर कंदड़ नारी मुबैना तौर क़तल। ॻोठा जी गुलशेर जोगी में 25 सालनि जी नाज़िम ख़ातून जोगी पुरस्कार नमूने फ़ौत थी। इतलाह ते पुलिस पहुची नारीअ जो मर्द ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। नारी जे वाले ते ईसन जोगी चयो त धीउ दम ऐं सहके जी बीमारी सबबि फ़ौत थी वई आहे। पुलिस जो चवणु आहे त नारी पसंदि जी शादी करणु चाहे पई। खेसि तशदुद करे क़तल कयो वियो आहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अचण खां पोइ वधीक कार्रवाई कई वेंदी। हैदराबाद जी होसड़ी वारे इलाइक़े में बि घर मां औरत जो लाश हथ। सीता नाले औरत जो लाश अस्पताल मुंतकिल। वारिसनि जो चवणु आहे त सीता आपघात कयो आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्ठों के खिंचाव,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: ਸਾਡਾ ਟੌਪ ਉੱਤੇ
1: हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 10 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: लागापियल इदारनि खे आवाम जो तहफ़ यकीनी पाइण अमन बरकरार रखण ऐं रियासत जी रिट खे मज़बूत करण लाइ हिक ॿिए सां वेझे राब्ते में रहण जी हिदायत बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन शबान में अॼु वधीक 21 दहशतगर्द मारिजी विया ऑपरेशन दौरान मजमूई तौर मारिजी वियल ख़ारजी दहशतगर्दनि जो अंग वधी 64 थी वियो सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि पाक फ़ौज एफ़सी ऐं पुलिस जो ख़ारजियुनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी आहे ताज़ियुनि कार्रवाईनि में अॼु वधीक 21 ख़ारजियुनि खे जनम गीड़ो कयो वियो जबलनि में लिकियल दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ज़मीनी ऐं फिज़ाई कार्रवायूं कयूं पयूं वञनि 5 जुलाई खां जारी ऑपरेशन शबान ऐं ॿियनि कार्रवाईनि में 102 दहशतगर्द मारिजी चुका करू वज़ीर मोहसिन नकवी पारां कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सिस खे भेटा पेश मोहसिन नकवी चयो त मुल्क में लिकियल समूरनि दहशतगर्दनि खे ख़तम कयो वेंदो

सिंध में एचआईवी केसेस में खतरनाक हद ताईं वाधारो थो थियण में गंबट खां पोइ कराची में सीसी जे मातहत वलीक अस्पताल एचआईवी पखेड़ जो गढ़ बणिजी वई। वधीक बबाड़ियूं एचआईवी में मुब्तला ज़िया कॉलोनी वासी नव वरियनि जी निगरी खे एचआईवी जी तस्दीक। संदसि ॿ मासूम ॿाहिरि अॻई एचआईवी में वरितल। मेट्रोविल वारे इलाइक़े में टिन वरियनि जी निगरी खे बि एचआईवी हुअण जी तस्दीक थी। वालदनि जो चवणु आहे त धीउ जो इलाज वलीक अस्पताल में थियो। तबियत ख़राब थियण ते टेस्ट कराई त एचआईवी पॉज़िटिव आई। वलीक अस्पताल जे 80 ॿारनि में एचआईवी जी तस्दीक थी वई। जब 4 मासूम ॿारा एचआईवी सां झड़ींदे ज़िंदगी विञाए चुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे नायब सदर जेडी वेंस ऐं परडे॒ही वज़ीर मार्को रूबियो खे ईरान सां सफ़ारती राब्ता ऐं ॻाल्हियूं जारी रखण जी हिदायत करे छॾी। पाण ते हमले जी सूरत में ईरान खे धरती तां मिसारण जी धमकी बि ॾिनी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमरीकी फ़ौज खे मूंखे क़तल करण जी सूरत में ईरान खे धरती तां मिसारण जो चई छॾियो आहे। फ़ौज ईरान ते 1000 मिसाइल फायर करण लाइ तयारु आहे। तेहरान खे साज़िश तां पोइ ते हटणो पवंदो। शहीद रेबर जी मौत जो प्लान वठण क़ौम जो मुतालबो आहे, पूरो थियणु घुर्जे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई चयो आहे त शहीद अॻवाननि ऐं शहरीनि जो प्लान वठण जो अहद कयूं था। परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़्शी चयो आहे त अमरीका सां मुआदो गॾियल बुनियादनि ते थी सघे थो। अब्बास इराक़्शी मौजूदा सूरतहाल ते ॻाल्हियुनि लाइ ओमान पहुतल। चिकतण में वाधवार ते अमरीका जहाज बरदार बेड़ा ईरान वेझो मुक़ररु करे छॾिया। यूएसएस अब्राहम ऐं यूएसएस जॉर्ज WH बुश खे ईरान वेझो मुक़ररु कयो वियो। सेंट काम मौजिब अमरीका जा 20 खां वधीक जंगी बेड़ा विचो भर जे समुंड में गश्त करे रहिया आहिनि। ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल पकई चयो आहे त ईरानी फ़ौज जे दुश्मन जी चुर पुर ते नज़र आहे। फ़ौज मुल्की सलामती ऐं अवाम जे तहफ़ुज़ खे यकीनी बणाए रही आहे। ईरानी क़ौम खे पंहिंजी फ़ौज ते फ़ख़्रु आहे। अमरीका मुआदो टोड़ियो त ईरान दिफ़ा लाइ तयारु आहे। ईरान कॾहिं बि जंग नाहे चाही पर ज़ुल्म आॾो न झुकंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालिफाफ चयो आहे त ॻाल्हियुनि दौरान अमरीकी नायब सदर खे ॿुधायो हो त असांखे अमरीका ते एतमाद नाहे। तकरार ईरान जे हथियार पटा करण सां कॾहिं बि ख़तम न थींदो। दुनिया जा मुख़्तलिफ़ मुल्क जंग जे ख़ात्मे खे तरजीह ॾींदा आहिनि। अमरीका सां असरायतियूं ॻाल्हियूं उहो करे सघे थो जेको जंग लाइ बि तयारु हुजे।